0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News।

विच में गडियल मफाद इख़्तिलाफ़नि खां वधीक अहम आहिनि। चीन ऐं अमरीका जा मुस्तहकम लाॻापा दुनिया जे मफाद में आहिनि। तारीख़ी सरबराही मुलाक़ात जो सभ खां बुनियादी ऐं मुख्य मक़सदु बदतरफ़ो वापारु आहे।

चीन जी पाकिस्तान के ईरान अमरीका जंग के खात्मे लिए टाकड़े जो कोशिशों तेज करने की अपील चीनी परडे वजीर वांग जी जो नायब वजीर आजम इसाक डार से टेलीफोनिक राबतो परडे वजीर पाकिस्तान अपने हुरमत के खोलने बाबत मसला हल करने में पैंजो किरदार अदा करे उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद से पैंजो कोशिशों जारी रखो खिते में जल्द अमन की बहाली लाए पैंजो किरदार अदा कंदो। ईरान से गाल में अगबराई थी रही है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो सदर ट्रंप पारा ईरान जो न्यू तजवीजों रद्द करने बाद बयान नायब सदर जेडी वेंस ऐसण है गाल में एतरी अगबराई थिए थी या न जी सदर ट्रंप की रेडलाइन के मुतमिन कर सकते सदर ट्रंप की रेडलाइन इंतहाई सादी है वो चाहे तो असा अड़ा हिफाजती कदम खड़ू जैसा ईरान करें एटम बम न ठाए सके। ईरान के परडेही वजीर अब्बास इराकची है अमरीकी धमाके वालों रवैयो अमरीकी धमकी वो रवैयो चिड़ियाड़ बयानबाजी ए बेईमानी अमन की राह में वही रंडक है। नॉर्वे के नायब परडेही वजीर से मुलाकात दौरान अब्बास इराकची अबन हुरमत जो असल मसलो अमरीका इसराइल की जंगबंदी के बार बार भंजकड़ी है। ईरान स्ट्रेटेजिक आब गुजरगाह लाय आलमी कानून मुताबिक जब्ता तैयार कर रहा है। पाक फौज फ्रंटियर कोर्ट जो बलूचिस्तान के जिले वारखान के इलाके नौशम में क्लियरेंस ऑपरेशन फायरिंग की रेवड़ दौरान फितने हिंदुस्तान जहा सत दहशतगर्द मारजी पाया दहशतगर्द के कब्जे में वे अंग में हथियार गोला बारूद धमाकेदार मादो हथ आईएसपीआर मूजिब दहशतगर्द से चक्रन दौरान पाक फौज के फील्ड ऑफिसर समेत पंज जवान भी शहीद थे। शहीदन में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी नायक फिदा हुसैन सिपाही जाकिर हुसैन शामिल हैं। ऑपरेशन फितनल अखबारत के दहशतगर्दन की मौजूदगी वाले इतला वो फितनल अखबार के दहशतगर्द के मुकम्मल खात्मे तई ऑपरेशन जारी रह। दिल्ली काबुल में हाँ को भी फर्क न रो इन वक्त बिन्हीं सरहदन से एक ही दुश्मन है। काबुल जो हुकूमत हुकुमरान की प्रॉक्सी हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनल है जो दिल्ली से सागो ही काबिल से भी कंदी कौमी असेंबली में गाली दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान से गाल में सऊदी अरब कतर तुर्किया व असो साथ दिनों काबिल दहशतगर्दन की सरपरस्ती खत्म करने की जवाब देने लाय तैयार ना है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शख्सियत के सिविल एजाज देने वाली तकरीब थी। सदर आसिफ जरदारी मुल्क लाइ कम करने के मुख्तलिफ एजाजन से नवाजियो जमहूरियत लाइ किरदार अदा करने मरूम नवाबजादा नसरुल्ला खान मरूम सेनेटर इरफान सदीकी मरूम ताज हैदर बिन के एजाजन से नवाजियो वो मरूम शख्सियत एजाज सदन वारसन वसूल किया वफाकी वजीर अवेश लगारी वजीर अजम के सलाहकार मोहम्मद अली अताउल हक कासमी घरू वजीर जयाल हसन नजार आईजी सेन जावेद अलम मोडो अगुणे क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के भी अवार्ड से नवाजियो वो पुलिस ए पाक फौज शहीद जवानों के भी अवार्ड से नवाजियो वो मुख्तलिफ शख्सियत के सिविल अवार्ड देने लाय चैनी सूबे के गवर्नर हाउसेस में तकरीबू भी थी। वजीर अदम आईटी की तालीम के आलमी गुर्जन से हम आंग करने लाय गडियल हिकमत अमली पेश करने की हिदायत कर छी। वजीर अजम शहबाज शरीफ सतरा सेठ इजलास में यूथ प्रोग्राम की जारी मनसूबन की अगबराई नवन मनसूबन की तजवीजों का जायजो वरतो वो। शहबाज शरीफ चाहिए हुकूमत नौजवान के तालीम हुनर रोजगार ए कारोबार जहा बेहतर मौका फराहम करने लाय पुरजम है। नौजवान के आईटी बिन शोबन में आलमी मयार की तालीम ए तरबियत देने लाय कदम बधाए रहा हूं।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
1: जी हा 2315-2575-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
3: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
1: जी हा 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: कलमा पढ़ो से निक भेरा दीघर पढ़न बिया बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों का फरती वन ए केरी हूं दी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करें न अंधाई
1: अर्दा मजबूर आशिक के मेरा यार दोस्त रोकिन था तू मैंने महबूब सम्मेलन नवन तुझा दुश्मन तोखे होते तुझा वेरी मारे वेजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खान थो डजा बहरहाल महबूब जो दीदार जरूर करणो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: रशी चिपिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो चीनी जे दौरे ते. बीजिंग में मौजूद अमरीकी सदर ट्रंप जे चीनी सदर शी चिंपिंग सां मुलाकात. बतरफ़ लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं. शी चिंपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार कंदे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो वियो त ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापा टकराव तरफ़ वधी सघनि था. सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाकात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जे लाॻापा तारीख़ी बुलंदनि तरफ़ वञण वारा आहिनि. चीनी ऐं अमरीकी सदरनि में मुलाकात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही.

ईरान खिलाफ़ साजिश करण जो एहतसाब कयो वेंदो, दुश्मन सां गॾु बीठड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाब ॾियणो पवंदो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त ईरान अवाम ख़िलाफ़ बेवकूफ़ी ते बदिलजो आहे। ईरान खिलाफ़ दुश्मन लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ी जोॻो नाहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाउ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
4: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03132525786
2: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,

रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे

हफ्ते 1 बजे तक। और प्रोग्राम में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वक्त की, तो वक्त हुआ जाता है 11:15 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा

इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में, ट्रक में, रिक्शा में, कार में, बाइक पे, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। और इसके अलावा जी वो लोग जो लोग या सालगिरह हैं उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको जाएंगे मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस की आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें। आमीन सुम्मा आमीन।

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी तीन तरीके कार से। आप लोग सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि है www.facebook.com/FM88GA Sakhar। के ऊपर आने के बाद सिंपली आप सर्च करें FM88GA Sakhar। इसके ऊपर आने के बाद आपको मिलती है एक अदद पोस्ट जो कि होती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488। इसके ऊपर कॉल करेंगे। दो सेगमेंट्स में आप लोगों के लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाता है। सो दो कौन से सेगमेंट हैं वो आपको मैं बताऊंगी। अच्छा, काफी दिन से नहीं बल्कि तीन वीक से हमारा जो सेगमेंट था हरा भरा पाकिस्तान वो नहीं हो रहा था। तो आज हम हरा भरा पाकिस्तान भी कर रहे होंगे 12 बजे के बाद एग्जैक्टली लाइव। ठीक है जी, तो आज हमारे पास एक और एक एडिशनल सेगमेंट दैट इज हरा भरा पाकिस्तान। ठीक है,

के साथ हम एक और गाना प्ले करेंगे एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. उसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा मेरे पास, सो स्टे ट्यून्ड. जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन, चाहिए FM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अवां जी स्किन डल बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार, ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे।
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03132525786
1: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: ओके जी, आप सब कमेंट्स को चेक करते हैं जी, और कॉलर भी मेरे से लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अच्छा, अभी अभी आपके कमेंट पे मेरी नजर पड़ी है और आपने लिखा है कि कॉल मिला रहा हूँ, और देखे कॉल आपकी लग गई है। ये क्या इत्तेफाक होता है अक्सर?
1: हो सकता है कोई इत्तेफाक हो या आप जानबूझ के
0: करें? नहीं, जानबूझ के मैं क्यों करूंगी, मैं थोड़ी आपके पास मौजूद हूँ, मैं थोड़ी कॉल मिला रही हूँ। है ना,
1: अच्छा लगता है।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

जा मेरे वास्ते हमको घायल

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और ब्यूटीफुल सॉन्ग सॉन्ग सुनेंगे आगे चलेंगे.

0: Okay, so welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार. एक बार फिर से गाने के साथ वापस आ चुके हैं जी, और हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हैं. सो गाना हमारा जो है ऑलमोस्ट पूरा खत्म होने की जानिब, और नेक्स्ट कॉलर में लेने जा रही हूँ. लाइन पे चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कॉलर कहाँ से.
1: जीएम बलोच मिर्पुर खान.
0: अरे जीएम बलोच भाई, किधर से आ रहे हैं इतने दिनों बाद.
1: आप लोग काली नहीं अटेंड करते हो, मेरी डेली कॉल लगती है, अटेंड नहीं होती.
0: अरे
1: नहीं,
0: आज के बाद हम आपकी कॉल अटेंड किया करेंगे.
1: नहीं, वजह क्या, अब देखिए कॉल नहीं लगे तो वो एक बात है, लेकिन जब कॉल लग जाती है तो आपका राइट बन जाएगी हमारी कॉल को.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है. और पॉसिबल है कि जब आपकी कॉल लगती हो या तो उस वक्त गाना चल रहा होता होगा, या ब्रेक होता होगा, या मैं बात कर रही होती होंगी. तो ऐसे हो जाता है कि जब लिसनर्स कॉल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह लग नहीं पाती है लगने के बाद भी. तो ये वाकई एक जो है ना इत्तेफाक है.
1: अच्छा, आपकी इस बात को मैं डिसएग्री करता हूँ. जो आपने इससे पहले कहा था कि मैं लाइट तो हो रहा है और कपड़े बदल के जाऊंगा, सागर भाई को मिल रहा हूँ, लेकिन हम कोई देहात या जंगल में या गांव में नहीं रहते हैं, शहरों में रहते हैं. और ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा काम किया है कि लाइटों से मैं रूम है. नहीं, ये गलत बात है. जो रियलिटी है उसको माने, ठीक है ना. और ये इस किस्म की डिस्कशन तो नहीं होनी चाहिए वैसे.
0: तो भाई मेरे क्या जरूरत है, वो सिर्फ गाना है. वो तो हमें भी पता है कि लाइट जब है हम शहर में रहते हैं.
1: लेकिन आपने और... वो आपने डिटेल दी ना, तो उस बात पर मैं बात कर रहा हूँ.
0: अच्छा, मैंने जो कहा कि लाइट नहीं होती,
1: आपने
0: आपके पास होती है.
1: बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपने लुकमा दिया है कि भाई वाकई लाइट नहीं होती है तो नए कपड़े पहन के जाऊँ काम है.
0: तो वो तो लॉजिक है ना, उसमें क्या शक बात है. आजकल लोड शेडिंग देख ली कितनी ज्यादा हो रही है, तो मैंने उस बात पे कहा है. अब ऐसा थोड़ी है कि मैं कहीं कच्चे के इलाके से आती हूँ और वहाँ पे लाइट नहीं होती. तो ये बात है ना, तो इस बात पे मैंने कहा था. तो आपने शायद गलत समझा होगा कि मैं इस तरह कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास तो लाइट नहीं होती, हम तो गाँव में रहते हैं. नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है. लोड शेडिंग तो शहरों में बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये बात है. अच्छा, गाना सुनाना था वैसे आपने.
1: नहीं, गाना आपने जो ये अभी गाना चलाया ना, वारिस
0: बेग का. हाँ, अच्छा नहीं था
1: ये. मैं इसको लाइक करता था, क्यों मैं हमारा दोस्त है अमेरिकन, वो भी इसको बहुत पसंद करता था, तो वो चला गया अमेरिका. तो उसने मुझे कहा था यार ये जो इसका गाना है ना, वो जरूर कहना कि मुझे सुना.
0: अच्छा,
1: वो आपने सुनाया नहीं था. बहरहाल चलो, यहाँ उन्हीं की आवाज में दूसरा सॉन्ग सुन लिया हमने.
0: चले ठीक है जी, ठीक हो गया. और कुछ कहना चाहेंगे.
1: अब तमाम सुनने वाले लोगों के अपना ख्याल रखें और गर्मी से बचे बस.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. आप भी गर्मी से बच के रहें. अल्लाह हाफिज, थैंक यू. स्वीट कॉलर और ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank of Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: न्यूज़ मुलाकात है रात बार ऑनलाइन हलाइंदी हुई एक ग्राम कोई कैन जा 15,000-20,000 रुपया वठंदी हुई नवा खरीदार के मनशा राइडर्स बदरा कहें मखसूस जगह ते रखी इजार डिनो वेंदो जै बाद खरीदार बुधायल जगह ता मनशात खणंदो हो अनमोल उर्फ पिंकी खिलाफ पंजाब में बजाज शुरू सीसीडी अनमोल उर्फ पिंकी के मुड़स रिटायर्ड इंस्पेक्टर के जांच लाए तलब करे वरतो पंजाब पुलिस के जरिए मौजूद पिंकी बारे मामले की जांच सीसीडी कर रही है सकरन वेझो भाणेजे था मामो कतल गोट जतो मक्सी में जवाबदार मिस्त्री जमाली पंजे मामे शमस जमाली के कतल कयो पंजे अकलपरसा गोट चौंगा में कलोड़ा बिरादरी के बिंदरन में मामूली गाल ता जेड़ो सलीमुल्ला कलोड़ो मारजी पियो बी दुर जा टे जणा जख्मी थिया नगर पालकर में सिंधी हारी तहरीक अवामी तहरीक पारां वधंदड़ महंगाई खिलाफ़ एजाजी रैली अवामी हाउस का मिस्किन जहान खान कोसो चौक तई रैली कढ़ी पई शहरन परतन सियासी समाजी ए मजहबी धुरन की शिरकत तेल जगह में वाद वापस वठी महंगाई के जब्तो आने अवाम के रिलीफ फराहम करने जो मुतालबो मदेजी में जलबानी बिरादरी जो एहतजाज पुलिस से नौजवान के खंभे गुम करने जो इल्जाम मुजाहरीन मौजूद पुलिस नौजवान वली खान जलबानी के खंभे गुम किया है आला अख्तियार नोटिस वठी नौजवान के आजाद कराने भी सूरत में एहतजाज दायरो बताया वो ऐं नादरीन मीरपुर भठोरो वेझो झोक शरीफ ऐं समय गोठनि खे पीअण जो पाणी फराहम कंदड़ गंज बहर कैनाल में पाणी जी खोट पैदा थी वई गंज बहर कैनाल में पाणी जी खोट सां आबादगार सारन जो फसल बि न पोखी सघिया पीअण जे पाणी जी बि खोट पैदा थी वई औरतनि ऐं ॿार परे परे वारनि इलाक़नि मां पाणी भरण ते मजबूर

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो, पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए होजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
4: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
1: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने बिया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
0: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनोकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: आई गायनोकोलॉजिस्ट आई औरतन जी बीमारियन जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफताब
0: आई डॉक्टर हमीदुल्लाह पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंजन 2 वगे खां शाम 4 वगे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियन जो माहिर मंजन 12 वगे खां 1 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
1: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन राचर जे दी मंजन 2 वगे खां 3 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
1: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो ग़ुलाम अली रोड मातली
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4
1: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
4: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. एक और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी. हमारा सेगमेंट जो कि होता है एवरी थर्सडे, जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, इट मीन्स के हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान. और इसके दामों से आप ये सेगमेंट सुन रहे होते हैं. और इस सेगमेंट में मैं अकेली नहीं होती, हमें ज्वाइन करते हैं चाइना बेजिंग से लाइव एहतसामुल हक. और एहतसामुल हक आज भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, पिछले पूरे 3 हफ्ते बाद. तो एहतसाम को वेलकम करेंगे और कहेंगे खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. बड़ा आपको एग्जैक्ट याद है, 3 हफ्तों बाद लगता है. आपने बहुत ज्यादा मुझे मिस किया है. और वो जो 15 मिनट में 15 मिनट जो मैं बोलता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपने उस 15 मिनट में मुझे खास तौर पर बहुत मिस किया.
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत मिस किया मैंने कि 15 मिनट मुझे खामोश रहने को मिल जाते थे, एहतसाम होते थे. तो और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे सुनने वालों ने भी आपको बहुत मिस किया. क्योंकि हमारा ये तय हुआ था कि 2 वीक प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन फिर 1 वीक उसमें और एडिशन हो गया, तो वो 3 वीक्स का हो गया जहां तक मुझे याद है.
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है. असल में यहाँ 6ठे एशियन बीच गेम्स हो रहे थे, चीन का एक शहर है सानिया. और वो चीन का जो कहना चाहिए कि जिस तरह से मालदीव को कहा जाता है कि वो खूबसूरत बीचेस की वजह से मशहूर है, तो इसी तरीके से ही चीन का ये जो शहर है सानिया, ये भी अपने खूबसूरत बीचेस की वजह से मशहूर है, टूरिज्म की वजह से. तो वहाँ एशियन बीच गेम्स हो रहे थे और उसमें पाकिस्तान का वक्त भी था, तो हम उसे कवर करने के लिए गए. 2 हफ्ते तो हमें वहां लग गए. और जब हम वापस आए, तो क्योंकि किसी भी टूर पे जब हम जाते हैं और उसकी सारी कवरेज होती है, तो जितना मवाद वहां से गेम्स के हवाले से इकट्ठा हो सका वो तो हमने पेश कर दिया. लेकिन जाहिर है फिर हम उस शहर में घूमे भी, देखा भी, वहां की खास चीजें नोट की, तो उसकी कुछ यूं समझें कि फिर उस पर लिखना और उसको लोगों के सामने पेश करना, उसकी वीडियोस पर काम करना. तो वो जो अगला हफ्ता था, जो कि तय नहीं था हमारा पहले कि हम छुट्टी करेंगे और ऑफ करेंगे, तो वो सारा हफ्ता उसमें निकल गया. और आप आज भी देखें कि आज भी गो के मसरूफियात बहुत है, लेकिन चूंकि डिले ज्यादा हो गया था, आज अमरीकी सदर यहाँ मौजूद हैं और हम सब से उसकी कवरेज में भी मसरूफ हैं और उसके हवाले से भी काम हो रहा है. लेकिन जाहिर है कि ये भी एक ऐसी चीज है जो कि आपसे वादा है, तो हमने कहा कि आज हम अपना जो कंटिन्यूटी है उसको दोबारा से शुरू करते हैं. और इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि हर जुमेरात हमारा राबता, अगर मैं कहीं नहीं गया शहर से बाहर, तो जारी रहेगा.
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा एहतसाम, आज हम एग्जैक्टली हमारा क्या टॉपिक है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जिसके बारे में अगर जब आप हम सुनते हैं, तो अक्सर ऐसे शहर होते हैं जो टूरिज्म की वजह से मशहूर होते हैं, कुछ शहर ऐसे होते हैं जो अपनी सनतों की वजह से मशहूर होते हैं, और कुछ शहर ऐसे होते हैं जो अपने तारीखी मकामात की वजह से मशहूर होते हैं. वहाँ कोई ऐसी तारीखी शहर, कोई ऐसी तारीखी बिल्डिंग मौजूद होती है. कुछ शहर ऐसे जो जिस तरह से मैंने अभी कहा कि अपने बीचेस की वजह से मशहूर है दुनिया भर में. लेकिन ये जो शहर है, ये दुनिया भर में जाना जाता है अपनी सब्जियों के हवाले से. ये मशरिकी चीन का सूबा है, इसका नाम है शेंडोंग. और ये सूबा शेंडोंग, उसका जो शहर है वो है शुगुआंग. ये एक ऐसा जरई मरकज है जो अपनी भरपूर जो जबरदस्त मिट्टी है और फिर साजगार इसकी आबो हवा है और फिर वहां पर आबी वसाइल भी हैं, तो इसीलिए ये शहर मशहूर है. और शहर की तारीख 2000 साल से कदीम है. जरा

0: दिस टाइम
1: जरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: खुशखबरी खुशखबरी अवाजे पेंजे श
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेस और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी अवाजे पेंजे शहर मातली में अवाजे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनता जेमे
8: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने बिया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
4: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनोकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
8: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझन 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
8: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
9: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
9: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
11: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो ग़ुलाम अली रोड मातली
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
11: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
11: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
11: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252576
11: जी हा 2315525786
8: GAFM रेडियो नेटवर्क
11: सिंध जो आवाज़

0: What a beautiful song. और ये song ना मैंने आते साथ line up किया था. मैंने सोचा ये मैं अब प्ले करूंगी, ये मैं अब प्ले करूंगी,
1: रखना मैं गल करा.
0: लेकिन ऐसे करते करते ना
1: बस
0: हम अगले घंटे में पहुंच गए.
1: बाजी बन गया के इतने शक्लां ने सोनिया पर दिल सारे फेक. आदत पै गई पे.
0: इस गाने की हर लाइन कितनी एक्यूरेट है.
1: इलाती सौदे बाजी बन गया के इतने शक्लां ने सोनिया
0: है ना
1: दिल सारे फेक.
0: इसी बात पे मैसेजेस की तरफ चलते हैं. सलाम, कैसी हो रुखसार बाजी? दुआ करो कि मैं 2029 का टॉपर बनूं पब्लिक सर्विस कमीशन के CSSP SP एग्जाम का. हम आपको इनवाइट करेंगे, क्या आप आएंगी? ऑब्वियसली मैं जरूर आऊंगी और इंशाल्लाह आप ये एग्जाम पास कर जाएं. दिल लगा के मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ें. कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा आपको, तब जाके आप ये अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे. क्योंकि जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है ना, तब तक वो चीज हासिल नहीं कर पाता जिसका उसे जुनून होता है. जुनून को पाने के लिए या किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी जगह पे पहुंचने के लिए, किसी पॉइंट पे आके रुकने के लिए, किसी मंजिल पे जाने के लिए, हमेशा इंसान को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है. क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, हम कभी भी किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं. बीइंग हार्ड वर्किंग.

0: सर।
1: अच्छा गाना चेंज करें क्या? गाना चेंज करते हैं जी साथ साथ। एंड गाना मेरे पास होगा एक अच्छा वाला। सो एक अच्छा वाला गाना हम सुनेंगे। और ये जो मैंने अच्छा वाला गाना लाइन अप किया हुआ था, ये क्यों इधर से उधर हो चुका है, लेकिन खैर हम प्ले करेंगे एक और सॉन्ग। एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय आसिम अज़हर। सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आगे चलते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है। ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
4: किसानों के आल...

0: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मैनजन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली। खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-200।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का. और लास्ट लग में हम वापस आ चुके हैं जी. और ये जो मोमेंट होता है ये इतनी जल्दी गुजरता है कि हम इसको रोक भी नहीं सकते और हम इसको कुछ बोल भी नहीं सकते. अच्छा कॉलर्स मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट लग के कॉलर्स ले लूं. 03000113488 इसके ऊपर आप लोगों की कॉल्स को मैं रिसीव करने की कोशिश करूंगी पूरी पूरी, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हमने लेनी थी और बहुत सारी कॉल्स हम नहीं ले पाए हैं. हमने आज बहुत कम कॉल्स ली हैं और गाना भी मौजूद है मेरे पास.

से वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लेकिन थोड़ा सदाए बड़ी सारी दुआएं फिर भी थोड़ा सनाए हम तेरे खास सदाए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

सहकार में फ़ायदो छिकता से नुकसान थन्द है। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ बदरा भाईवा थे मशवरो दे छो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। शी जिनपिंग सदर ट्रंप के ताइवान बाबत खबरदार करते तो मामले के दुरुस्त नमूने न संभाले वो तो लागापा टकराव तरफ बधी सन था। आलमी बहरान हल रुगो सफारतकारी गाल सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर से मुलाकात के कामयाब करार दीदे है। बीजिंग ए वॉशिंगटन जहा लागापा तारीखी बुलंदी तरफ वन वा चीनी अमेरिकी सदर में मुलाकात तकरीबन 2 कलाक जारी रही।

इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि जो ॻुझो दौरो कयो हो। परॾेही ख़बर इदारे जी दावा, इसराइली वज़ीर आज़म जे ऑफिस नेतन्याहू जे यूएई जे ॻुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जे गॾियल अरब इमारतुनि जे ॻुझे दौरे जी तरदीद करे छॾी। परॾेही वज़ारत मूजिबि इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी माहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानियल आहिनि, जिन में का बि ॻुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल न आहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतुनि जो दौरो नाहे कयो। ईरान ख़िलाफ़ साज़िश कंदड़नि जो एहतसाब कयो वेंदो। दुश्मन सां गॾु बीहंदड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाब ॾियणो पवंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरानी अवाम ख़िलाफ़ बीहण बेवकूफ़ी ते ॿधल जुआ आहे। ईरान ख़िलाफ़ दुश्मनी जे लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ीअ जोॻो न आहे।

एटमी असां सां अगराई जे लाइ न पर मुल्क जे दिफ़ा जे लाइ आहिनि। हक़ वारी जंग में दुश्मन पाक फ़ौज जो सेखारियल सबक समूरी जमार यादि रखंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ काबीना खे ख़िताब कंदे चयो आहे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू कयो, नवाज़ शरीफ़ मुकमल कयो। दुनिया पाकिस्तान खे हिकु ज़िमेवारी एटमी क़ुवत तौर सुञाणे थी। हुकूमत आवाम खे रिलीफ़ फराहम करण जे लाइ समूरा वसीला कतब आणे रही आहे। हक़ वारी जंग में कामयाबी जो ॾिहाड़ो भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। कोकेन क्वीन पिंकीअ जे केस में अहम ख़बर आहे। पुलिस पिंकीअ जे बैंक अकाउंट ऐं ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन जा तफ़सील हासिल करे वरिता। पिंकी जा अकाउंट संभालींदड़ अहम जवाबदार ज़ीशान कराची जे गुलिस्तान जोहर मां गिरफ़्तार। पुलिस ज़रियनि मुजिबि पिंकी जे छरुकनी गैंग में पंज मर्द हिक औरत शामिल आहे। अनमोल उर्फ़ पिंकी मंशियात जो समूरो कारोबार ऑनलाइन हलाईंदी हुई। हिकु ग्राम कोकेन जा 15,000 खां 20,000 रुपया वठंदी हुई। नवनि ख़रीदारनि खे मंशियात राइडर्स बदिरां कंहिं मखसूस जगह ते रखी इतलाह ॾिनो वेंदो हो, जंहिं बाद ख़रीदार ॿुधायल जगह तां मंशियात खणंदो हो। अनमोल उर्फ़ पिंकी ख़िलाफ़ पंजाब में बि जांच शुरू। सीसीडी अनमोल उर्फ़ पिंकी जे मुड़ुस रिटायर्ड इंस्पेक्टर खे जांच जे लाइ तलब करे वरितो। पंजाब पुलिस जे ज़रिए मुजिबि पिंकीअ वारे मामले जी जांच सीसीडी करे रही आहे।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो किए थियो ऐं छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो यो किसो तांके आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खनी हलो आ उते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थी

सिरा तक उन्हीं से जाकर उन्हीं से आसमान की जिंदगी से मौत तक सांस उतार से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरा और मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब आप लोगों को पहले से जो है ना मैं थोड़ी बहुत सी बातें बता देती हूँ ताकि आप लोग ये चीज समझ जाएंगे जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की खूबसूरती को जो फायदे मिलने वाले हैं या फिर खूबसूरती बढ़ने वाली है तो वो किस तरह से बढ़ेगी और क्यों बढ़ेगी। अक्सर ऐसा होता है कि आप जरा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो यही आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। बिल्कुल इसी प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे ये भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं so listeners presenting the most beautiful fantastic interesting and entertaining character your RJ and your DJ Sidra Muskan naam to sunai hoga to bilkul ji aapki Sidra aap logo ke saath saath mukhatab ho chuki hai is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye to bilkul ji ready ready ho jaiye hamare saath saath maujood rehne ke liye program mein fun karne ke liye program mein baatein karne ke liye aur program mein khoobsurti ke raazon ko janne ke liye। सो डियर लिसनर्स अंधे फालत उनके सही आपकी हालत उम्मीद शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुकून मूड के साथ सुकून प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होते हैं और इन 2 घंटों में हम इनिशियली बातें कर लेते हैं यानी कि बहुत ज्यादा वाली बातें करते हैं और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज जाली रे आली सिदरा अली बॉस आपके होंठों पर 440 की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल जी आपके होंठों पर 440 की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। ओके जी सो आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। कलाम सुनती है उसके बाद हम ना जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सुनते रहिए पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ।

0: लगाने में तो ऐसा सीन है, जब आप गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जो भी लाइट वेटेड हो और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, आपकी स्किन की खूबसूरती को मेंटेन करे, आपकी खूबसूरती को बढ़ाता रहे, आपकी स्किन को ग्लो देता रहे, तो भाईजान बिल्कुल आप लोगों के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर हाजिर हो चुके हैं, जिनका इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहेंगे बल्कि गर्मियों का सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाईजान हमारे पास मौजूद है व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है व्हाइट एश ब्यूटी सोप, और उसके साथ साथ आपको मिल रहा है व्हाइट एश वाइटामिन सी फेस वॉश, और उसके अलावा आप लोगों को मिल रही है जनाब व्हाइट एश की लवली क्रीम। व्हाइट एश की लवली क्रीम की तो मैं क्या ही बात बताऊं जनाब, ये तो इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे जनाब कि ये तो भाई मतलब गेम चेंजर साबित हो गया। तो व्हाइट एश की लवली क्रीम जिसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल एड किए गए हैं और साथ ही साथ सनस्क्रीन भी एड की गई है ताकि आप लोगों को खूबसूरती भी मिले और आप लोगों के चेहरे की जो स्किन है ना वो प्रोटेक्ट भी रहे सन से, सूरज से और उसके नुकसानदायक किरणों से। और उसके अलावा है जनाब हमारे पास डॉक्टर पिंपल नाम से ये एक्नी क्लियर ट्यूब। डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप एक्नी क्लियर ट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो वो अब खत्म होने वाले, क्योंकि आपके पास डॉक्टर पिंपल ट्यूब मौजूद है। तो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके चेहरे की एक्नीज खत्म हो जाए। और उसके साथ साथ हमारे पास जो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के लिए है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है डी स्किन का फेस वॉश। ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताती रहूंगी वो बहुत ही अलग क्वालिटी के होंगे। बिल्कुल जी, आप जरा आराम से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको जो चीज बताई जा रही है तो उससे फायदा क्या आप लोगों को मिलेगा। बस ऐसे होते हैं बहुत से लोग जो कि बस सुनते हैं और वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो भाई जान पहले सुना करें, समझा करें, उसके बाद ही जो है ना आप अमल कर लिया करें। ओके, सो यहाँ पर प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो में यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि गर्मियों में आप किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और यासीन गुटाड़ो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं सकरन से। वालेकुम सलाम प्यारा भामा, ठीक था बुधा की आयो, ठीक ठाक मजे में। और मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर के अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, सॉन्ग सुनाए फायज अली का। बिल्कुल जी फायज अली आज आपकी फरमाइश के ऊपर आएंगी। और उसके अलावा नूरिस अंतोनियो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं बदीन से। गुड आफ्टरनून एवन आई स्टे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन जी आमीन। यूनिस खोड़ो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ है, हिदायतुल्लाह आपको भी वेलकम हो गया जी। आदिल हुसैन हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। आदिल लिखते हैं, मोहब्बत देख ली हमने जमाने भर के लोगों की, जहां कुछ दाम ज्यादा हो वहां इंसान बिकते हैं, क्या बात है। और उसके अलावा नूर सिंतुनियो भाई कहते हैं कि अदी सिद्रा आपका व्हाइट एश एनडी ब्यूटी शो बड़ा सुपर डुपर है, बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिएगा, आपको प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। और उस्मान बलूच हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो चाचा खाले चुनी जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोराई जबार टगड़ हमें सुन रहे हैं, माशाल्लाह वीआईपी प्रोग्राम, थैंक यू। इकबाल आशारिया हमें सुन रहे हैं, इकबाल लाशारिया में मीरपुर खास से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। दर्द दिल हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं, मजे में। और उसके साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते जाइए, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए। यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा, हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, क्योंकि आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक है। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग।
1: It's 1:30 PM.
2: Kudrati Nikhar, saaf, naram, aur roshan chehro. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
3: Har din, har pehar, zindagi ki lehar. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
4: Kisanon ke aalmi din par, Sona ki janib se kisan.

0: This program is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125257 86
1: जी हा 2315-2570-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: किसाननि खे आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसाननि

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
1: सुनते रहो GFM 90.4

0: प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटिश एनडी स्किन ब्यूटी शो आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बता दी जा रहे हैं और उसके अलावा वासु भाई कहते अदी सिडो अलुखा पोई तवा जे प्रोग्राम में हर रोज हाजिरी भरना भरनी पवंदी। हाँ जी बिल्कुल रोज दींदा कयो। और ये हमारे साथ है मुलाजिम भाई, आपको भी वेलकम हो गया। सनौला बिरोई हमारे साथ में मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम किशोर भाई। वालेकुम अस्सलाम अदा खुशाही। मानी वानी खादी या वनी खाईंदे? वनी खाईंदा से अस नाश्तो करे ईंदा आयो। केड़ा जगह गानो न वणियो कुटकी जा के दाद आयो। बहुत ही प्यारा गाना। और एक और गाना भाई हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि होने वाला है फायजा अली की आवाज में और मुमताज मोराय की आवाज में। फायजा अली से गाने जी तमा हेडी सारी रिक्वेस्ट कना है सो ही गानो ने सबने के डेडिकेट हुंदो। आई प्रोग्राम में अगर तमा सा सगट मौजूद है त बाबा मुखे यो भी बुधाइंदा हलो त तमा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मा केडो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया है या केडे प्रोडक्ट जो है
1: तेर थड़िया त तू यादा

वाह साई वाह, वाह साई वाह, ॾाढो भलो गानो ॿुधो पिया. ही प्रोग्राम आहे जनाब व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड कयो वञे पियो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां तव्हां इस्तेमाल कंदा, तव्हां खूबसूरत थी वेंदा ऐं तव्हां सोणा बि थी वेंदा. सही आहे. अच्छा, यहां पर हमारे साथ हैं जी हिदायतुल्लाह. ओके जी, आपका बहुत शुक्रिया. और यहां पर महर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं. तो महर इरफान सियाल साहब, आपको बहुत शुक्रिया वेलकम के साथ साथ. ओके जी, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए. दर्दी दिल कहती है कि टॉपिक चंदा, मैं तो हवा पर भरोसा करती हूँ. अच्छा. ये तो लेटेस्ट न्यूज है. हजार खंड तो ये हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम हजार भाई, चाला खुश आयो. हजार खुलो ना कराए जो ना तो खत्म थी.

0: साईं वाह वाह साईं वाह एसन अली बुक्टी भा लाड़का ने खासा के ज्वाइन करे चुका है सो मोहब्बतू अवां जो चाचा खाले जुनी जो सगर मौजूद आन बिल्कुल जी डेली तमासन प्रोग्राम जो सो थिंदा आयो सो मोहब्बतू अवां जो भी इन खा अलावा आदिल हुसैन कहते हैं अम्मी पूछ रही है आपको बलोची में बात करनी आती नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है हेलो दद्दल कहती है कि हाँ याद आया तुम पर और शो पर भरोसा है मुझे गर्मी में और कुछ अच्छा लगे ना लगे लेकिन तुम्हारा शो बहुत अच्छा लगता है जय हुदा अच्छा हजार भाई कहते हैं कि हम आप पर और वाइट एश के लवली क्रीम पर भरोसा करते हैं क्या बात है जी वाइट एसी लवली क्रीम जी तो बाबा अलग ही कुछ अलग है वाइट एसी लवली क्रीम जी के मानू लगान पाया ना वो सफा सोना थी ना वन पाया छो तो वाइट एसी लवली क्रीम तवाजी खूबसूरती के वधाए भी थी तवाजी खूबसूरती के जो मेंटेन भी रखी थी तवाजी खूबसूरती के जो ना प्रोटेक्ट भी करे थे सो हिकड़ी क्रीम के अंदर तवाके एतरा सारा फायदा मिलन था जालमो तो वटो छोन पाया ये हर स्किन टोन जी लाया ही जी लाइकड़ी फेयरनेस क्रीम है जगह तमा डी में लगायो रात में लगायो तमा जी मर्जी हर एज वारो मानो लगाए सके तो बाबा एडो मजेदार प्रोडक्ट मौजूद है तमा जरूर ट्राई करे जो ठीक है अच्छा अली मोहम्मद हमें सुन रहे हैं अली मोहम्मद भाई आपका बहुत शुक्रिया अहमद हमारे साथ है अहमद हाला वालेकुम अस्सलाम अनवर भाभी हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते व्हाइट एच डी स्किन प्रोग्राम करने थे वेलकम क्यों था वाह सही वेलकम पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो ठीक है इतने कंजूसी न करना गयो और यहाँ पे टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं और इसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे तो आपने बस कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहे
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
2: जिन्हें माँ बांजो ख्याल रखने दिया है, तो सेहत
3: जान के गुलताने जोहर मागिरता करे वतो पिंकी जांच दौरान वंशियात बाबत समूरी डेटी लेती ऑनलाइन करण जो एतराफ करो पुलिस पिंकी के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जा तफसील भी हासिल करे वा अनमोल उर्फ पिंकी पुलिस के जांच दौरान बुधाया तो संदस गैंग कराची में माहवार 2 करोड़ का वधिक जी मंशियात विक्रो कंदी हुई लाहौर का मंशियात की सप्लाई के लिए इंटरसिटी बसन जो इस्तेमाल किया वेंदो हो ऑफिसर्स के 2 करोड़ रुपया रिश्वत डिनी वेंदी हुई कराची में मंशियात विक्रो कंदड़ औरत की गिरफ्तारी ते इदारन की सारा थियण घुर्जे पोताइन की भली निशानदेही कयो पर सुठे कम की तारीफ भी थियण घुर्जे सिंध के सीनियर वजीर सरजी लीना मेमन चयो मंशियात विक्रो कंदड़ औरत के बिना हथकड़ी अदालत में पेश कंदड़ अहलकारन के मुअतल कयो वियो आहे सिंध में अमन अमान की सूरतहाल में बेहतर आहे समूर हाईवेज महफूज आहिन सूबे में सनत लगाने के लिए हुकूमत जमीन भी मुफ्त में डेई रही है चाराए भुट्टो भी हलंदड़ महीने ही खोली वेंदी कोकेन कोइन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ पंजाब में भी पुलिस जांच शुरू कर छी सीसीडी अनमोल उर्फ पिंकी के मुड़स रिटायर्ड इंस्पेक्टर की जांच के लिए तलब करे वरतो पंजाब पुलिस के जरिए मौजूद

0: हेठ बि असां सां अगराई जे लाइ न पर मुल्क जे दिफ़ा जे लाइ हक वारी जंग में दुश्मन पाक फ़ौज जो सेखारियल सबक समूरी जमार यादि रखंदो। काबीना इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू कयो ऐं नवाज़ शरीफ़ मुकमल कयो। दुनिया पाकिस्तान खे ज़िमेवार एटमी ताक़त तौर सुञाणे थी। हुकूमत आवाम खे रिलीफ फराहम करण जे लाइ समूरा वसीला क़तम आणे रही आहे। हक़ वारी जंग में कामयाबी जो ॾिहाड़ो भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सहकार में फ़ाइदो ऐं छिकतार सां नुक़सान थींदो आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़त बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात। शी जिनपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार कंदे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो वियो त लाॻापा टकराउ तरफ़ वधी सघनि था। आलमी बुहरान जो हल रुगो सिफारतकारी ऐं ॻाल्हियूं आहिनि। सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाकात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जा लाॻापा तारीख़ी बुलंदियुनि तरफ़ वञण वारा आहिनि। चीनी ऐं अमेरिकी सदरनि में मुलाक़ात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि जो ॻुझो दौरो कयो हो। परॾेही ख़बर इदारे जी दावा। इसराइली वज़ीर आज़म जे ऑफिस नेतन्याहू जे यूएई जे ॻुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जे गॾियल अरब इमारतुनि जे ॻुझे दौरे जी तरदीद करे छॾी। परॾेही वज़ारत मूजिब इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी वाइदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानिया आहिनि जिन में का बि ॻुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल नाहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतुनि जो दौरो नाहे कयो। ईरान ख़िलाफ़ साज़िश कंदड़नि जो एहतसाब कयो वेंदो। दुश्मन सां गॾु बीहंदड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाब ॾियणो पवंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरानी अवाम ख़िलाफ़ बीहणु बेवकूफ़ी ते ॿधल जुआ आहे। ईरान ख़िलाफ़ दुश्मनी जे लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ीअ जोॻो नाहे। सकरनि वेझो भाणे जे हथां मामो क़तल। ॻोठ जतो मुख़्ती में जवाबदार मिस्री जमाली पंहिंजे मामे शम्स जमाली खे क़तल कयो। पनवागल फसां ॻोठ चुंघा में कलोड़ा बिरादरी जी बिंदुरनि में मामूली ॻाल्हि तां छेड़ो सलीमुल्ला कलोड़ो मारिजी वियो। ॿी धुर जा 3 ॼणा ज़ख़्मी थिया। नगर पालिका में सिंधी हारी तहरीक अवामी तहरीक।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
7: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
8: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्त आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल जेका ॾे कुदरती निखार साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
9: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
10: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
9: خوشخبری خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
10: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
9: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائی عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
10: ائی گائناکالوجسٹ ائی عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
9: ائی ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
10: ائی ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر کمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
9: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
4: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03132525786
2: जी हा 2315-2575-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो फिर आप डायल करेंगे 03-15-799-0595 03-15-799-0595। ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए और वहां से जाकर परचेज करते जाइए, क्योंकि आपकी खूबसूरती अब आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर है। तो जाइए और परचेज कीजिए, अगर नहीं अवेलेबल तो अवेलेबल कराइए, ये भी आपके हाथ में है। ओके जी, तो प्रोग्राम में यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद थे। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि गर्मियों में आप लोग भरोसा किस पर करते हैं। ओके जी, तो एक गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, हम जरा थोड़ा सा ना गाना सुन लेते हैं और गाने के बाद जो है ना हम आप लोगों की कुछ कॉल्स भी पिक करेंगे, ठीक है। और साथ साथ आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, पैनल पर आपका काफी सारा रश हो चुका है, तो पैनल की जाने बातें ये गाना हमारे पास मौजूद है। एड़ो हिन दिल ते मिठा छड़ो थे जादू करे तुझे तो खे दिसां मथो मुंजो तो फिरे। अच्छा गाना है।

ये गोठ मोहम्मद तैयब थेबू खां हबीबुल्ला थेबू है तवा जो शोवीरी नाइस आहे तवा खुश रहो हमेशा तवा भी खुश रहो प्यारा भाव। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी सलाम आरजे सिद्रा क्या हाल है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं। ये हमारे साथ हैं इमरान अली बिरोही भाई आपका बहुत शुक्रिया। प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्रॉम अहमद आबाद वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान पाक आर्मी स्वीट शो प्लीज रहमान मुगल का कोई भी सॉन्ग लगाइएगा। हाँ जी ये फरमाइश आपकी रह जाती है कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश ना रहे लेकिन अगर रह जाती है तो फिर नाराज मत हुआ करें।

अच्छा ये कश्यप कहती हाय आप कैसी हैं, गुड आफ्टरनून, आज मेरी सिस्टर माविजा की हैप्पी बर्थडे है, उसके लिए अच्छा सा गाना चलाइएगा। जी जी ठीक है ओके ओके। और उसके अलावा माविजा को बोलिए कि वो भी जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करे। और उसके अलावा कश्यप कहती है सिद्रा, ओ सिद्रा कहती है लाजवाब है हमारी प्यारी आप ही सिद्रा मुस्कान, आप ही आपका शो बहुत लाजवाब होता है, हम आपका बहुत शो पसंद करते हैं, बस हमारी आंख जो है ना हर नए दिन को घड़ियाल पर होती है कि कब एक होगा आप ही आएगी, मुझे आपका बहुत इंतजार होता है, बहुत ही आप ही, कल आपको मेरी तरफ से छुट्टी है ओके ओके ओके, सुभाणे कश्यप की तरफ मुझे छुट्टी अथव ॿुधी छॾियो। अच्छा गोठ मोहम्मद तैयब थे हाबीबुला थे सांग बुधराए जो सपना सपना तुझा सपना निंड अचे तो

वाह साईं वाह, भलो गानो आ साईं, तमा के बणंदो हुंदो। अच्छा मर्शद माजो दी अदी जी, हमारे दोस्तों को सुपर रिजल्ट मिला है, तो अब मैं आतिफ मंठार, शायान, राहुल यासीन और आकाश, हम अब साथ में ओके ओके जी, सारे लगाइएगा। वैसे कौन सा प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, जयपाल भाई बताएं तो। और लिखते हैं, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। सलाम अदी जी, नाइस शो, शानदार प्रोडक्ट्स है, वाइट एच एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गुड ऑल प्रोडक्ट्स एंड यूज कर रहे हैं, लवली ब्यूटी एंड सोप को भी इंजॉय कर रहे हैं आप हमारा शो भी। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे हाँ, ये लवली क्रीम का तो जलवा ही कुछ अपना है, तो जो लोग इस्तेमाल करें वो बिल्कुल यही कह रहे हैं, तो आप भी इस्तेमाल कीजिए, जेके मानू अन्य रह जनता सही।

अच्छा इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम। कहती है इसी तरह जवाब है अल्लाह पर एंड चले, ये भी अच्छी बात है। जयपाल भाई कहते हैं टॉपिक एसी, अदी जी एसी पर भरोसा नहीं, लाइट या सोलर पर भी, पर एसी नहीं, एसी ने तो एसी एसी की होती है। बिल्कुल ये सही बात है, वैसे एसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और बाकी आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भी आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो भरोसे वाली बात होती है ना, ये थोड़ी बहुत जो है ना वो देखा जाए तो कभी कभार इंसान को जो है ना सही रास्ते पर भी ले आती है, क्योंकि सही भरोसा करना आप लोगों के लिए सही साबित होता है। जब आप सही इंसान पर भरोसा करते हैं, सही चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं, तो यहीं पर आप लोगों के लिए जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम लेकर आए हैं, ताकि आप लोग सही प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कर सके और सही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सके, ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती जाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है जनाब। विटामिन ई बीड्स पाकिस्तान में थोड़े से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स डाले गए।

उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। तो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करिए और साथ साथ माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार शुदा है, दो रातों के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, तो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा और साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी लगाइएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले बहुत ज्यादा वाले। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595। अच्छा जयपाल भाई, बस गर्मियों में तो गुजारा हो ही जाता है भाई, गुजारो तो करणो पवंदो है ना, भले केड़ो भी मौसम हुजे। केते रात को चलेंगे, ठीक है, एंजॉय कीजिएगा। और ये कहते हैं इमरान अली बिरोही भाई, टीचर क्या हाल है आपका? आपका जवाब है सर्दी हो या गर्मी, हमारा भरोसा अल्लाह पर है और किसी पर नहीं है। तो अच्छी बात आपने कर दी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा फेसबुक वाले लोग हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बताएं जल्दी से। अच्छा किशोर भाई क्या कहते हैं कि मानो हर तो करे सगे तो पर इंसान ते न करे। शायद सही गाना।

सिंगार अली जमाली हमारे साथ है आई एम ओके जी, आपने हमें सिंध न्यूज HD से ज्वाइन किया है, जियो फखर सिंध न्यूज से। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया। आप CEO हैं वहाँ के, क्या नाम है आपका? सिंगार अली जमाली, बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका। और जनाब, आप सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए। आपको नहीं मिल रहे तो जो नंबर आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर रब्ता करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए। स्मार्टो गोपांग भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, आपके मैसेजेस कॉमेंट्स पढ़ते हैं, जरा सा सब्र किया करें और यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानेब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 जो डे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जडहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: किसाननि खे आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावे से। तो लगाते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, अपनी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल जी, बढ़ाते जाइए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाए, क्योंकि खूबसूरती के बिना भी इंसान जो है भलो ना लगन। तो अगर तुम स्किन जो तवी स्किन चाहे थी तो थोड़ा मजेदार प्रोडक्ट्स हुजन घुर्जन आई स्किन जाना या फिर स्किन ऑयल काफी सारो जमा थी वेंदो आहे। तमा सोची ना था बाबा इनके कंट्रोल किया कर जे, तो तमा इस्तेमाल कयो व्हाइट एज जा प्रोडक्ट्स या डी स्किन जा प्रोडक्ट। अच्छा एक बी गाल तमा के बुधाई दे ला, जेके व्हाइट एज जा प्रोडक्ट आए ना उनन में खोर सारा प्रोडक्ट मौजूद आए, आई हर तरह तमा जी स्किन के प्रोटेक्ट करने लाए। आई डी स्किन में ना सिर्फ तमा जलाए प्रोडक्ट आए, जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए, डी स्किन जो फेस वॉश आए, ठीक है। सो जेके मानू लाइट वेटेड प्रोडक्ट जे तलाश में आए नहीं चवन था बाबा असांके सिर्फ कोई अड़ो प्रोडक्ट खपे जो असि स्किन की हिफाजत करें, मतलब जो खूबसूरती भी दें, तवा स्किन के क्लियर भी बनाए, तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा सोता जो सफा लाइट वेटेड फार्मूलो है, बिन रात के इस्तेमाल से तुम्हें खूबसूरत निखार दी। और अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश लगानो है, बाकी जो मूल जो इलाही सारा प्रॉब्लम्स फेस जी तवे चेहरे ते एकनी आए, तो तवज लाइ व्हाइट एज जो डॉक्टर पिंपल एकनी क्लियर ट्यूब आए। डॉक्टर पिंपल नाले से तुम वी सो तवे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल होंगे, एक जरूर इस्तेमाल कर तवे चेहरे जहा एकनी खत्म थी वा। गर्मी के मौसम में अक्सर अस परेशान होता तो असा कड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों, गर्मी के मौसम में तवी खूबसूरती जो है सफा डल थी वी है, वजह जो वह भी सांवरी थी वी है। व्हाइट एज की अंदर सनस्क्रीन भी मौजूद है। तो बाबा तमाम मजेदार प्रोडक्ट आए, तुम लाजमी ट्राई कर, फुल वाइटमिन से भरपूर आए, तुम्हारी स्किन के खूबसूरत भी खूबसूरत बनाए छी, तुम डी जो भी लगाओ राजो भी लगाओ, वहीं सफा असली मजो कर।

सो तव्हां डायल कयो पिया 03-15-799-0595, ठीकु आहे, ही नंबर डायल कयो पिया। करीबी जनरल स्टोर ते ही तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल करायो, हुन सां गॾो गॾु जेको आहे अलाए छा पई चवां। अच्छा इमरान अली बरोई भाई कहते हैं, भाजी आपकी पूरी टीम को मेरा सलाम, और जो आपका जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आपका शो सुनते हैं उन सबको भी सलाम। ओके जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ, अच्छा जो कॉमेंट है ना अगर आते जा रहे हैं तो बाकी लोगों के जो कमेंट है ना वो ऊपर चलते जा रहे हैं, तो वो कुछ कमेंट्स आप लोगों को रह जाते होंगे। मैं कोशिश करी हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती जाऊँ, लेकिन कुछ रह जाए तो उनके लिए माजरा, ठीक है। और गुलाम रहीम बलोच भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं गुलाम रहीम बलोच भाई जान। और हिदायतुल्लाह कहते हैं टॉपिक आंसर भरोसा अल्लाह पढ़े। ओके जी, और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा स्मार्टो गोपांग हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें कंपर से सुन रहे, कहते हैं अभी पेपर करके आया हूँ और आपका शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू। और अब्दुल रजाक जरदारी भाई हमें सुन रहे हैं, और अहमद हलार हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अच्छा हजार भाई कहो गानो तुम बुधंदा, पर हाँ खैर नई फरमाइश कर छो तो लिस्ट फुल थी चुकी है। वरी मेन ही तव्हांजो गानो ॿुधंदा, सुभाणे त तव्हां मूंखे मोकल ॾिनी आहे न।

चाचा खालिद बिल्कुल दुआ करेंगे आपका, मैंने कमेंट देख लिया था, परेशान ना हो आप, खोर सारी दुआ है। अच्छा अरिबा कहती हूँ, ओ बाजी जवाब है, मैं अपनी प्यारी दिलबर दोस्त भाभी इरम पर भरोसा करती हूँ और प्यारी भाभी इरम की। अच्छा चले, अच्छी बात है, माशा या मोहब्बत ताजी कायम दायम रहे सैया।

मूंखे सुना प्रोग्राम में तव्हांखे ख़ूबसूरती जो ॻाल्हियूं ॿुधाईंदी आहियां ऐं तव्हां खां मालूम बि कंदा आहियो त तव्हांजे कहिड़े कहिड़े सिटी में कहिड़े कहिड़े शहर में कहिड़े कहिड़े ॻोठ में जेका आहिनि हीअ प्रोडक्ट अवेलेबल थिया आहिनि ऐं हिननि प्रोडक्ट में शामिल आहे वाइट एज जा प्रोडक्ट आहिनि जनाब, जेके खोड़ सारा प्रोडक्ट आहिनि, असां गॾो गॾु डी स्किन जा प्रोडक्ट आहिनि। सो अगरि तव्हां वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु चाहियो था या फिर तव्हां इस्तेमालु कयो पिया या तव्हां इरादो कयो आहे ख़ाली, त तव्हां बिल्कुलु पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो। उन खां अलावा वाइट एज जी लवली क्रीम त तव्हां सभु लाज़मी लॻाइजो, ठीकु आहे। वाइट एज जी जेका लवली क्रीम अथव न, सफ़ा ज़बरदस्त क्वालिटी जी प्रोडक्ट अथव, सो तव्हां ट्राए करे ॾिसजो। इहे पर्सनली मां बि इस्तेमालु कंदी आहियां, जेके ख़ासि करे माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे कोई कमु हूंदो आहे, यानी कि हू ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि जॉब कंदा आहिनि या फिर पढ़ंदा आहिनि, स्कूल वञो था, कॉलेज वञो था या फिर तव्हां ऑफिस वञो था, त अहिड़ी सिचुएशन में तव्हांखे जेको आहे न अहिड़ो कोई प्रोडक्ट खपंदो आहे जेको तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बि बणाए ऐं तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि करे। त उन में जनाब वाइट एज जी लवली क्रीम बेस्ट आहे, सो तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। मां पाण इस्तेमालु कंदी आहियां, सो तव्हांखे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलंदा जनाब, ट्राए करे ॾिसजो। मज़ो न अचे पैसा वापसि, मज़ो अची वेंदो। ओके, सो लाज़मी लॻाइजो। हुन खां अलावा वाइट एज जा फेस वॉश आहे ऐं सोप आहे। तव्हां फेस वॉश लॻाइण वारा माण्हू आहियो त तव्हां फेस वॉश लॻायो, तव्हां साबुण लॻाइण वारा माण्हू आहियो त तव्हां साबुण लॻायो। बाबा ॻाल्हि एतिरी आहे, समझो छो न था।

अच्छा इमरान अली उज्जैन हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें मोरो से सुन रहे हैं शायद, आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। ओके जी, शमन का गाना भी लिस्ट में मौजूद था, दाडो बल्लू गाडो।

बहुत ही प्यारा गाना आप एंजॉय कर रहे हो, साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम टू रजानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ नाइस शो, सलाम टू नदड़ी एंड ऑल क्यूट लड़कियां। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से, हमारी लुबी हमारे साथ मौजूद है, लुबी वेलकम करते हैं आपको। और इसके अलावा ये नदड़ी कहाँ है वैसे? अच्छा, वफा शहजादो मक्सी भाइयों में सुन रहे हैं लाड़काना से, वेलकम कहते हैं जी प्यारे भाई को। शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है, हेलो शहबाज।

गाना भला लाया है। अच्छा जयपाल भाई कहते हैं कि हम लवली क्रीम जरूर यूज करेंगे, डेफिनेटली एग्री हैं। मैंने सब दोस्तों को रात को कहा था मैं यूज करूंगा जनाब अदी जी। ओके थैंक यू। ओके बिल्कुल जयपाल भाई, लवली क्रीम जो है ना व्हाइट एज की, ये तो आप जरूर ट्राई कीजिए। लड़के लड़कियां सभी लगा रहे हैं, खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। आई जनाब ही डाटो भलो प्रोडक्ट था, बस मतलब जिका चना है ना इलाइन गालन जी नंढड़ी गाल सफा भलो प्रोडक्ट है, सब लगायो सही आई। तो इजीली कहें भी दुकान तां वनी वठी सगो था, चो बाबा व्हाइट एज जी लवली क्रीम जो असा के व्हाइट एज जी लवली क्रीम वठ जो या वरी तां यो भी चे जो हो लवली क्रीम जो जे अंदर सनस्क्रीन शामिल आए सही आ। को दुकान वारो समझी वेंदो त केडी शी वठण आया है। कुछ असा जा लिसनर थोड़ा मासूम हुंदा है, सो जेके मासूम लिसनर उनन जे लाए यो या त तमाम व्हाइट एज जी लवली क्रीम वठो। आई सो वा क्रीम जो असा के लवली क्रीम जे अंदर सनस्क्रीन शामिल आए सही आ, को तां के आराम सा मिली वेजी। अगर नथी मिले तो उन्हें चलाए तवा के नंबर बुधायो आ जेती तवा राबतो कंदो पया कंदा वन्यो पया सही।

अच्छा हिदायत ना, ऐसी बात नहीं है, मैं भी लगाती हूँ व्हाइट एज की लवली क्रीम। अल्लाह सच्ची बुझाया। अमानुल्लाह टगड़ हमारे साथ मौजूद है। हेलो गुलाम अकबर खास के लिए, हेलो।

हाँ जी, ये भी बात है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल जयपाल भाई, आप जाइए, अच्छे से ट्रैवल कीजिए, एंजॉय कीजिएगा, और वाइट हेज के प्रोडक्ट भी जरूर परचेज करके जाइएगा। सभी की विराय दियो बाबा, तोहफा दियो, तोहफे देने से मोहब्बत वधंदी अथव। सो गिफ्ट कयो पंहिंजे प्यारनि खे, सोणनि खे, जी अञा वधीक तव्हां सोणो थींदे ॾिसो, सही आहे न? मां कोशिश कंदी आहियां प्रोग्राम में इलाही सिंधी ॻाल्हायां।

जनवरी का खालिक लाशारी यदि प्रोग्राम बुधा पयो चाय भी पिया पयो वाह वाह वाह वाह एंजॉय कयो एंजॉय कयो चाचा ये तां बिल्कुल सही गाल कई अल्लाह।

0: होने वाला।
1: ओकरी शाहनवाज अली खास के लिए भी हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम जी वेलकम।
0: हर हर दिल भरते दिलम दिवाने पे अचड़ो आ जानिया थे दिल बोले
1: आए हाय। अमानुल्ला टगर भाई आपको गाना पसंद आया, बहुत शुक्रिया। अब आप व्हाइट एज के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करके देखिएगा और डी स्किन के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करके देखिएगा। पांजे प्यारन के मशवरो जो तो हाणे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर जेके मार्केट में अवेलेबल आहे आई जेके तवाजे खूबसूरती के वधायन भी पया। ठीक है, इमरान अली उजन भास से अगर मौजूद आए। हेलो
2: जी शादिया।
1: अच्छा मु समझो सब गाना भला भला हलाया था, लास्ट में एकड़ो तवा के सैड गानो भी बुधराइंदा सी। सो ही सॉन्ग डाडो भलो आए
2: जे थी न सका तमा
1: ये गानों उन्हें डेडिकेट जेके दुख वाला गाना बुधन पसंद करना है। ठीक है।

जयपाल भा तव्हांजो मोहबित अलाए टोक था कयो अलाए तारीफ़ था कयो कॾहिं कॾहिं ॻाल्हि थोरी सम्झ में न ईंदी न न अॼु चाचे फरमाइश कोन कई हुई मां पाण इहो सोचां पई अॼु चाचे फरमाइश छो न आहे कई पर असांजी परंपरा आहे न प्रोग्राम जी लास्ट में हिकिड़ो सैड गानो हलाईंदा आहियूं सो बिल्कुलु हुई प्रोग्राम तव्हां ॿुधो वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो जेको डेली तव्हां ॿुधंदा आहियो 1:30 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे प्रोग्राम में ऐं रोज़ाना तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में ताकी तव्हांखे इहा ख़बर पवे त बाबा मार्केट में हाणे ही प्रोडक्ट बि अची विया आहिनि तव्हांखे हाणे कहिड़ा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणा आहिनि

0: इट्स 3 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे
3: कोकेन कोइन अनमोल उर्फ पिनके जे केस में नवन इंकशाफन ऐं गिरफ़्तारनि जो सिलसिलो जारी. पिनके जो माहवार 2 करोड़नि खां वधीक जी मंशियात कराचीअ में विकरो करण जो एतराफ़. ऑफिसर्स खे करोड़ रुपियनि जी रिश्वत ॾियण जो बि इंकशाफ़. कराची पुलिस पिनके जा अकाउंट संभालींदड़ जवाबदार ज़ीशान खे गुलिस्तान ऐं जौहर मां गिरफ़्तार करे वरितो. पिनकी जांच दौरान मंशियात बाबति समूरी ॾेती लिती ऑनलाइन करण जो बि एतराफ़ कयो. पुलिस पिनके जे बैंक अकाउंट्स ऐं ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन जा तफ़सील बि हासिल करे वरिता. अनमोल पिंकी पुलिस खे जांच दौरान ॿुधायो आहे त संदसि गैंग कराचीअ में माहवार 2 करोड़नि खां वधीक जी मंशियात विकिरो कंदी हुई. लाहौर खां मंशियात जी सप्लाई जे लाइ इंटरसिटी बसुनि जो इस्तेमाल कयो वेंदो हो. ऑफिसर्स खे बि करोड़ रुपया रिश्वत ॾिनी वेंदी हुई.

कराची में मंशियात विकिरो कंदड़ औरत जी गिरफ्तारी थे इदारन जी साराह थियण घुर्जे कोताहिन जी भली निशानदेही कयो पर सुठे कम जी तारीफ़ भी थियण घुर्जे। सिंध जे सीनियर वजीर शहजीर इनाम मेमन चयो आहे त मंशियात विकिरो कंदड़ औरत खे बिना हथकड़ी अदालत में पेश कंदड़ अहलकारनि खे मुअतल कयो वियो आहे। सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल बि बहितर आहे। समूरा हाईवेज महफूज़ आहिनि। सूबे में सनत लॻाइण जे लाइ हुकूमत ज़मीन बि मुफ़्त में ॾेई रही आहे। चारा भुटो बि हलंदड़ महीने खोली वेंदी। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी खिलाफ़ पंजाब पुलिस बि जांच शुरू करे छॾी। सीसीटी अनमोल उर्फ पिंकीअ जे मुड़ुस रिटायर्ड इंस्पेक्टर खे जांच लाइ तलब करे वरितो। पंजाब पुलिस जे ज़रिए मूजिबि पिंकीअ वारे मामले जी जांच सीसीटी करे रही आहे। पिंकीअ खे कराची खां लाहौर बि आणे सघिजे थो। एटमी असासा अगराई जे लाइ न पर मुल्क जे दिफ़ा जे लाइ आहिनि। हक़ वारी जंग में दुश्मन पाक फ़ौज जो सेखारियल सबक समूरी जमार यादि रखंदो। काबीना इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुतो एटमी प्रोग्राम शुरू कयो ऐं नवाज़ शरीफ़ मुकमल कयो। दुनिया पाकिस्तान खे ज़िमेवार एटमी ताक़त तौर सुञाणे थी। हुकूमत अवाम खे रिलीफ फराहम करण जे लाइ समूरा वसीला क़तब आणे रही आहे। हक़ वारी जंग में कामयाबी जो ॾिहाड़ो भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सहकार में फ़ाइदो ऐं छिकतार सां नुक़सान थींदो आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़ बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात। शी जिनपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार कंदे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो वियो त लाॻापा तकरार तरफ़ वधी सघनि था। आलमी बहराननि जो हल रुगो सिफारतकारी ऐं ॻाल्हियूं आहिनि। सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाक़ात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जा लाॻापा तारीख़ी बुलंदियुनि तरफ़ वञण वारा आहिनि। चीनी ऐं अमेरिकी सदरनि में मुलाक़ात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि जो ॻुझो दौरो कयो हो। परॾेही ख़बरू इदारे जी दावा इसराइली वज़ीर आज़म जो ऑफिस नेतन्याहू जे यूएई जे ॻुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जी गॾियल अरब इमारतुनि जे ॻुझे दौरे जी तरदीद करे छॾी। परॾेही वज़ारत मूजिबि इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी मुआहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानिया आहिनि जिन में का बि ॻुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल न आहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतुनि जो दौरो नाहे कयो।

0: ईरान खे केर भी शिकस्त नथो ॾेई सघे। तहरान आज़ादी जे दिफ़ा जे लाइ मुकमल ताक़त सां विढ़ण जे लाइ तयार आहे। नई दहलीअ में ब्रिक्स परडेही वज़ीरनि जे इजलास खे ख़िताब कंदे ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान ईरान खे अमेरिका ऐं इसराइल जे ॿिनि वहशियाननि हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। ईरानी अवाम शदीद बमबारीअ बावजूद साबित क़दम रहियो। ईरान क़ौम खे धमकी या दबाव वारो नथो कंदी, मोहबत जो जवाब ई मोहबत सां ॾींदी। अमेरिकी सेनेट मां सदर ट्रंप जा ईरान जंग बाबति इख़्तियार महदूद करण वारो ठहराउ हिकु वोट तां रद्द। सदर ट्रंप जा इख़्तियार महदूद करण वारे ठहराउ जी हिमायत में 49 ऐं मुखालिफ़त में 50 वोट्स पिया। सेनेटर जेफ बर्कले जे ठहराउ जी टिन रिपब्लिकन सेनेटर्स पारां बि हिमायत कई वई।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315-2575-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ताडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो जीए FM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 3:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम

0: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ Aloe Vera, Vitamins और Avocado की भरपूर खूबियाँ जिसके Minerals Skin में फौरी Absorb हो जाएं, Skin को Fair और Fresh बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ White H Beauty Cream Glowing Skin का राज। A product of Biocon International Pakistan.
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अघ मौजूद आहे।
4: अवां जे इत्माद खे कायम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाउ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी, सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस: सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस: एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माकली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemay Diamond Gloss Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hemay Diamond Gloss Bleach Cream.
0: Pakistan ki shaan, Wadi-e-Mehran, Mehran ki pehchan. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत.
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे.
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा.
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं. डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा.
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
5: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली.

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजा

0: नू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से

0: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी अमन वारियुनि कोशिशनि जी कामयाबी लाइ दुआ गुआयूं। अठाई आईनी तरमीम बाबति अञा ताईं कुझु बि साम्हूं न आहे आयो, तबसरो नथो करे सघां। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त हुकूमत खे नए माली साल जी बजट में अवाम खे रिलीफ ॾियण जी कोशिश थियण घुर्जे। बजट ते हुकूमत सां मुशावरत लाइ चार रुकनी कमेटी जोड़ी आहे। राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मांडवी वाला, शेरी रहमान ऐं नवीद कमर कमेटी में शामिल आहिनि।

सहकार में फ़ाइदो ऐं छिकताण सां नुक़सान थींदो आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प खे मुख़ालिफ़ बदिरां वाइवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। सदर ट्रम्प खे डिनर आजाइण खे ख़िताब कंदे चीनी सदर चयो त अमरीका ऐं चीन जो तालुक दुनिया में सभिनी खां अहम आहे। ॿई मुल्क गॾिजी तरक़ी करे सघनि था। अमरीका खे ॿीहर अज़ीम बणाइण चीन जी तरक़ी सां भेट रखे थो। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो त चीन में शानदार आदर भाव कयो वियो। ट्रम्प चीनी सदर ऐं संदसि वनी खे अमरीकी दौरे जी दावत बि ॾिनी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब अमारतनि जो गुझो दौरो कयो हो। परॾेही ख़बरू इदारे जी दावा इसराइली वज़ीर आज़म जी आफ़िस नेतन्याहू जी यूएई जे गुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब अमारतनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जे गॾियल अरब अमारतनि जे गुझे दौरे जी तरतीद करे छॾी। परॾेही वज़ारत मौजूदु इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी मुआहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानिया आहिनि जिन में का बि गुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल न आहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब अमारतनि जो दौरो नाहे कयो। ईरान खे केर बि शिकस्त नथो ॾेई सघे। तेहरान आज़ादीअ जे दिफ़ा लाइ मुकमल ताक़त सां विढ़ण लाइ तयारु आहे। नई दिल्ली में बुरकस परॾेही वज़ीरनि जे इजलास खे ख़िताब कंदे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराक्षी चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान ईरान खे अमरीका ऐं इसराइल जे ॿिनि पेशियाणनि हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। यूएई बि ईरान ते हमलनि में सिधी रीति मुलविस हुयो। ईरानी क़ौम कंहिं धमकी या दबाउ आॾो न झुकंदी। मोहबत जो जवाब बि मोहबत सां ॾींदी।

0: सिंध हाई कोर्ट SPSC 2024 जी गजल चटाभेटी इम्तिहान जा नतीजा मुअत्तल करे छलिया। साल 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे रिपोर्ट पेश करण जो भी हुकुम। सेक्रेटरी SPSC ए कंट्रोलर के 21 मई ते जाती हैसियत में पेश थियण जी हिदायत। इम्तिहानी जवाबन वारियूं कापियूं बेतहवील में वठण जो हुकुम। जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर ऐं जस्टिस निसार अहमद बंबरो ते ॿधल आईनी बैच मुख़्तलिफ़ उमेदवारनि जी दरख़्वास्तनि ते ॿुधणी कई। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे साल 2024 जे इम्तिहाननि जो समूरो रिकॉर्ड सील करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। केस जी वधीक ॿुधणी 21 मई ताईं मुल्तवी करे छॾी।
1: पार्लियामानी पार्टी जो अहम इजलास। पीपल्स पार्टी जे चूंडियल नुमाइंदनि वफ़ाक़ी हुकूमत ख़िलाफ़ शिकायतनि जा ढेर लगाए छॾिया। पीपल्स पार्टी जा गबन थियण ऐं नुमाइंदगी न मिलण जूं शिकायतूं। वफ़ाक़ी हुकूमत सां जारी सहकार ते नज़रसानी करण जी तजवीज़। टफ टाइम ॾियण जो मुतालबो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चूंडियल नुमाइंदनि जी शिकायतनि ते वफ़ाक़ी हुकूमत सां ॻाल्हियुनि लाइ चार रुकनी कमेटी जोड़े छॾी। किचन खां वफ़ाक़ी

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिक नओ ग्लो हिक नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: सो लिसनर्स बिल्कुल रौनक महफ़िल प्रोग्राम में बाबर शेख हवा सां गॾु आहे जी ए एफ एम नेटवर्क आहे ऐं 8 वॻे ताईं अहां जो असांजो साथ आहे अॼु प्रोग्राम लास्ट आहे ऐं इनशाला ताला वरी नए प्रोग्राम में अवां सां मुलाक़ात थींदी कुझु ॾींहनि खां बाद में ठीकु आहे त दोस्तो बिल्कुलु प्रोग्राम में मां अव्हांखे जीअं ॿुधाए चुको आहियां त हिन प्रोग्राम में असां हिननि 7 महीननि में जेको आहे त कहिड़ियूं जेके आहिनि त शयूं सिखियूंसीं ऐं ग्रूमिंग कहिड़ी थी गॾो गॾु हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल सां अव्हांखे नेचुरल ग्लो कीअं मिलियो अव्हां छा पिया सम्झो ऐं प्रोग्राम जे हवाले सां अव्हांजो जेको फीडबैक आहे तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी ॾेई सघो था अॼु वधि खां वधि तव्हांखे मां इंक्लूड करण वारो आहियां ठीकु आहे सो ही चए पियो वींदड़ ख़ुशीअ ते खिलंदा विया पर पाण त रोईंदा रहिजी वियासीं खेनि वराए कंध ॾिठाऊं ॾिसंदा अच्छा ॾिसंदा अच्छा अॻिते यार तव्हांजो मैसेज जेको आहे न मिसिंग पार्ट आयो आहे असां ॾिसंदा टिकंदा रहिजी वियासीं ओके अदा इमाम बिनु भमरो साहिब ज़बरदस्त यार अव्हांजी मोहबतूं ऐं तव्हां त हमेशह गॾु हूंदा आहियो प्रोग्राम में मुंहिंजे इनशाला वरी कुझु गैप खां बाद में वरी ईंदासीं पाण सो हीउ चए बलोच ग्रुप नूर नबी गबोल टंडो अला यार खां त बाबर अव्हांजो शो नाइस आहे चवनि पिया असां हिननि फीडबैक ॾिनो आहे त सवालनि वारे सेगमेंट शामिल कंदा कयो ऐं विनर जी फिरमाइश हलायो ऐं सवाल रोज़ रखो अदा ठीकु आहे जॾहिं नेक्स्ट प्रोग्राम में ईंदुसि तव्हांजे हिन फीडबैक ते ज़रूरु गौर कंदुसि ऐं अमूमन तक़रीबन मुंहिंजे हिन प्रोग्राम में सवालात जो सिलसिलो बि हूंदो आहे हिन प्रोग्राम जे ज़रिए तव्हांजी तमामु घणी नॉलेज में बि इज़ाफ़ो थियो आहे ॼाण जी खां सेगमेंट जे थ्रू जी आहे हिकिड़ो ही वॉइस नोट अचो त ॿुधूं
2: बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई केटी शाबिलो उमीद आहे त ख़ुशि हूंदो ख़ुशहाल हूंदो अॼु सम्झ सच पुछो त आख़िरी ॾींहुं आहे हेमी ब्यूटी क्रीम जे प्रोग्राम जो ॾाढो ॾुख बि थिए थो पर हाणे ज़रूरु हे हलचल जो ज़मानो आहे वरी इनशाला तव्हां त असां जुड़ियल हूंदो बाक़ी यादूं त हे हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो घरु आहे हे फेम घरु आहे ॿुधूं था खोड़ सातरात दोस्तनि कॾहिं रुसूं बि था कॾहिं खिलूं बि था कॾहिं भोग मज़ा कां बि इहे बि यादगिरियूं असांखां न वेंदियूं भई इनशाला वरी को शो खणी ईंदव बाक़ी हाणे हेमी ब्यूटी क्रीम जो ज़िलट यार मां कूड़ न हणंदो मां इस्तेमालु कान कई पर हेतिरा दोस्त जेका मोट ॾियनि पिया स्लिपियूं मोकिलनि पिया त हेमी ब्यूटी क्रीम त पंहिंजो मटि पाण आहे ठीकु आहे भई राजा साईं अर्ज़ु आहे को असांखे मास्टर मंज़ूरु ॿुधाइजो त ॾिसो यार मुंहिंजे जूं क़ुर्बानीूं धर त थियमि पधड़ा थो करे कॾहिं अवेर सवेर थी वेंदी आहे धर ते बि सरडा थो करे भाउ बाबर साहिब तव्हांखे खोड़ सारा सलाम ऐं तंहिंखां बाद में आसिफ़ चाचड़ लाड़काणे खां मुंहिंजो भाउ ज़हीर में जतोई मुंहिंजो भाचो आयाज़ में जतोई

0: हलंदो आहे ऐं सत महीना हली विया ऐं सत महीना यार कीअं गुज़री विया का ख़बर कोन पई मूंखे। बहरहाल अव्हां जूं मोहबतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो ख़बर ई न पवंदी आहे टाइम कीअं थो गुज़रे। अव्हां जो थोराए थो आहियां मां इन्हनि मोहबतुनि जो हिकिड़ो ही वॉइस नोट। चलो साईं महिरबानी हुबदार शेख साहब तव्हांजी मोहबतूं यार तव्हां सेल्फी बि मोकिली आहे ऐं तव्हां सेल्फी सां गॾो गॾु यार जेके तव्हांजी मोहबतूं ॾिसो सेल्फी जेका तव्हांजी ईंदी आहे न मां इहो ज़ाहिर थींदो आहे त तव्हां मूंसां केतिरो अटे छायो ऐं तव्हां मूंखे केतिरी सुठी मोट ॾियो पिया ऐं बाक़ाइदे तौर ते जेके ईअं सुठी मोट ॾींदा आहिनि जीअं अशरफ अली मीराली साहब हींअर सेल्फी मोकिली आहे ज़बरदस्त तरीक़े सां साईं जन जी बि महिरबानी मोहबतूं आहिनि ऐं हिननि हिकिड़ो वॉइस नोट बि मोकिलियो आहे तक़रीबन अढाई मिंटनि जो आहे जेको अॼु त मूंखे सभिनि जा वॉइस नोट शामिल करणा आहिनि त हिन जो मां प्ले कयां पियो ॿुधो।
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद बाबर बाग केड़ा लन खुश आयो मां उम्मीद कयां था जिते हूंदा खुश हूंदा ऐं सदाई आबाद हूंदा मुस्कराईंदा रहंदा। मां विलेज वांड बशा मुंहिंजी सिविका असांजे डिस्ट्रिक्ट लारकन खां अशरफ अली मीराली पियो ॻाल्हायां। भाजी ते तव्हांजो प्रोग्राम हेमे नेचुरल्स डायमंड गिलो ब्यूटी क्रीम वारनि जे तावन सां जेको हलंदो हुयो ऐं रौनक महफ़िल नालो बि तव्हां रखियोसि हुन जो सो अॼु आख़िरी प्रोग्राम आहे ॾाढो ॾुख पियो थिए असां अचूं पिया जे करे प्रोग्राम हले आहे ॾाढो ॿुधंदा हुआसीं सुकून मिलंदो हुयो ऐं रोज़ानो टाइम ते पाबंदी सां ॿुधंदा हुआसीं ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो। अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे तव्हां अनाउंस कयो आहे असांखे ॾुख थो थिए त हाणे असां कंहिंजो प्रोग्राम ॿुधंदासीं कंहिं मां लुत्फ़ अंदोज़ थींदासीं ऐं कंहिं मां सुकून वठंदासीं छो त हिन में तव्हांजो आवाज़ ई अहिड़ो हुयो न कोयल जहिड़ो मिठड़ो आवाज़ हुयो ॾाढो ख़ूबसूरत पसंदीदा आवाज़ हुयो मूंखे न बल्कि काफ़ी दोस्त किथां किथां खां ॻाल्हाईंदा हुया सभु ईअं ई चवंदा हुआ त वाह बाबर वाह बाबर वाह। सो हाणे अगरि ही असांजा आवाज़ हेमी नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारा ॿुधनि पिया या ॿुधनि त हुननि खे असां रिक्वेस्ट आहे भई प्रोग्राम ख़तमु न कनि ख़तमु थियण सां जेको आहे न असांखे ॾुख थो थिए ऐं हीअ जेका सत महीना गुज़री विया आहिनि गुज़िरियल सत महीना असां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधोसीं ॾाढो मज़ो आयो ऐं हाणे जेकॾहिं तव्हां ख़तमु था कयो त मूंखे सम्झ में नथो अचे छा ॿुधंदासीं ऐं सत महीना ईअं गुज़री विया सत महीना काफ़ी अरसो हूंदो आहे हूअं त हाणे ईअं पियो लॻे ॼण हिकिड़ो कलाकु गुज़रियो सो तव्हांजो असांखे प्यार ई एतिरो मिलियो ऐं ॾाढो असां जेको आहे तव्हांखे भाईंदा आहियूं ऐं तव्हां असांखे वध खां वधि इज़त ॾिनी ॾाढो सुकून थियो मिले असांखे ऐं आख़िरी प्रोग्राम मां ॾुख थो थिए सो हाणे बाबर भा तव्हां त मोकिलणी कयो पिया पर असां बि तव्हांखे चवंदा जेकर न वञूं पर मां इहो बि सम्झां थो स्पॉन्सर छो आहे छो त ईअं त मां नथो हली सघंदो हुन खां सवाइ हुनजे तावन खां सवाइ न हली सघंदो तव्हांजी ॻाल्हि बि सही आहे सो असां रिक्वेस्ट कंदासीं इन प्रोग्राम में अॼु तव्हां चयो तव्हांजी फरमाइश बि आहे ऐं असांखे अॼु शमन अली मीराली साहब जे आवाज़ में न हीउ कलाम ॿुधाइजो हीअ असीं ज़िंदगी ईअं गुज़री वई का ख़बर ई न पई सो जीअं हीअ सत महीना गुज़री विया ख़बर कान पई तीअं उहे बि शमन अली मीराली लफ़्ज़ सही आहिनि ॾाढो हुन बि सही ॿुधायो आहे सो अॼु महिरबानी कजो इहो ॿुधाइजो ऐं आख़िरी सेल्फी जो सेंड करे रहियो आहियां सो हाणे मुंहिंजा भाइरनि इम्तियाज़ अली बंगलाणी न उनखे बि खोड़ सारा सलाम हुजनि छो त आख़िरी प्रोग्राम आहे वरी अलाए छा थिए हिन महिल तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया अब्दुल जबार मीराली तनवीर मीराली साजन मीराली ऐं असां सभिनी तरफ़ां भा अलविदाई ऐं या अली मदद
0: माला अली मदद साईं तव्हांजी महिरबानी मीराली साहब अवां जी मोहबतूं ऐं तव्हांजो इहो फीडबैक यार सचमुचो दिलि ते लॻो आहे ऐं दिलि न पई थिए प्रोग्राम मां वेंदे पर छा आहे त यार वञिणो थो पवे वरी वेंदासीं वरी मोटी ईंदासीं इनशाला पर इहो जेको तव्हां फीडबैक ॾिनो त अलाए त छो स्पॉन्सरशिप ख़तम इहो फीडबैक तव्हां हिननि जी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे हिननि खे ॾेई सघो था नंबर आहे 0336-7135-407 जी हा 0336-7135-407 ऐं यार ख़बर आहे तव्हांखे जॾहिं मां अॼु इहो थोरो प्रोग्राम जी तयारी पई कई त सोचां पियो त यार सत महीना प्रोग्राम किथे आहे ख़बर ई न पई कल्ह जी ॻाल्हि पई लॻे ॾिसो रमज़ान जे मुबारक जे महीने में पाण ई प्रोग्राम हलायोसीं उन खां पहिरियां बि महीना ई हली चुको कीअं ज़िंदगी गुज़रे पई यार कुझु ख़बर कोन पई पवे हिन जे लाइ यार जेतिरो थी सघे न तव्हां जेको आहे न उहे कम कयो जेके असांजी दुनिया ऐं आख़िरत ॿिन्हिनि में कमु अचनि ज़िंदगी ईअं ई सिमिलरली गुज़री वेंदी हाणे सत महीना मतिलबु अगरि असां सत महीना चऊं न त इहे सोच में अचनि यार वॾो टाइम आहे पर ईअं पई लॻे जीअं हींअर मीराली साहब चयो यार कल्ह जी ॻाल्हि आहे कलाकु लॻो ॾियणु कलाकु गुज़री वियो त यार ॿेली जेका आहे न कोशिशि कयो सिधी वाट ते बि हलूं असां ऐं उहे मतिलबु कमु कयूं अला पाक जे ॿुधायल उन रस्ते ते हलूं जंहिंसां असांजो हीउ जान ऐं मथियो जान बि ॿई असांजा अहिड़ा हुजनि जो अला साईं असांखे पंहिंजे अमान में रखे ठीकु आहे ऐं तव्हांखे दुआउनि जे लाइ बि मां ज़रूरु चवंदुसि त मुंहिंजे लाइ दुआ बि ज़रूरु कंदा कयूं मां बि अव्हांजे लाइ दुआ हूंदो आहियां ऐं सेकेंडली

0: परफेक्ट जे कहे अहां के का भी शे जे कहे मां समझा भी दुनिया में नथी मिली सके परफेक्ट शे जे कहे अगर असा प्रोग्राम में तवा परफेक्शन गोलियो तो वो दाडी दुखी होंदी आने काफी सारे लिसनर्स एडा होंदा जिनकी फरमाइश पूरी नथी सकंदी हुजे बोलो साहब मुझे कहने पनवाखिल का एक बोला बिरादरी ने हमेशा मुखे मयार दीना यार बाबर हेफ हुजे गानो न हलाई असा जो तो बाबा उन्हें का भी माजरत आया जिन जा गाना न हलाई सके जिन जा वॉइस नोट शामिल न कर सके उन्हें का भी माजरत खाया तो दिल दे न खण प्रोग्राम जो हिस्सो प्रोग्राम में कलाक हों कलाक में भी अगर गाने जो टाइम कड़ी वेठा तमाम घट टाइम होंद टाइम में मुझे मैनेज करो होंद गाली जगह थी पर प्रोग्राम इलाही कुछ पा सीख से भी जान की खाट सेगमेंट मु रखियो ही इन हो तो प्रोग्राम में असा एंटरटेनमेंट से गो गुड इन्फॉर्मेशन भी तमाम घनी पढ़ाई तमाम घनी असा इन्फॉर्मेशन मिली यकीन तुम्हारी नॉलेज में भी इजाफो थो हों सो अमां जो मोहब्बत जो माथो रहा तो हिंदर शमन अली मीराली की आवाज में यो गानों जरूर हलाइंदुस हसी जिंदगी गुजरी वही सत महीना का खबर ही न पई बिल्कुल एकड़ो ही वॉइस नोट शामिल करे पोए मैंने गाने की तरफ हलां पे ठीक है अच्छा कोशिश की प्रोग्राम लास्ट है तो सेल्फी से गडो गड तुम्हारा वॉइस नोट जो ना थोड़ा शॉर्ट हो जाए ठीक है ही बुधो
1: अस्सलाम वालेकुम बाबर वाह मां फतेह राणा जरूरी गाला रहे हो गोठ हाजी गुलाम रसूल जुने जेगा एमए बीटी क्रीम तमाम खूबसूरत बेहतरीन है पर असा के दुख है जो तू असा के छड़े पे वनी मजो ना है हने असा छा बुझंदासी तो सेल्फी भी असा सेंड कई है अल्लाह कंदो पोची इंदो तोड़ सेल्फी कुछ मुझा दोस्त आमिर अली बिरोई इम्तियाज अली बंगलानी परवेज बंगलानी शिराज बंगलानी लामकाने का अशरफ मिराली तनवीर मिराली साजन मिराली प्यारो मुझो दोस्त गुलाम रसूल मरी अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम असलम साई तुझी मेहरबानी फकीर साई अवज मोहब्बत यार सच पुछो मैं ढो मिस कंदुस सत्ती अठी वो टाइम में मुझे दिल न पी चे वेंदे पर हाँ स्पॉन्सरशिप है मीराली साहब गाल समझी वो चलो एक वॉइस नोट है अरे तो माशाला यार जो सेल्फी अचन पी गुल गुलाबी शाह साहब माशाला साई चेहरों ऐखारियो अथई मुखे ढी खुशी थे पई पर हेमे ब्यूटी क्रीम की कमी है बहरहाल इट्स ओके गुल गुलाबी शाह साहब छापया चवन अचो तो बुध पा
2: السلام علیکم یا علی مدد حق موجود بابر جانی تمام دکھا یار واسطہ تو کہ رب جاوے دا ہیمے ڈائمنڈ گلو شو چھڈے نہ ون چھڈے ویندے تے رویندا سی پیا بابا سو این نہ کر اساں کے دکھا ہے نہ شو نہ چھڈے ون بابا ہر حال میں تسا حاضر تھیندا سی डायमंड गिलो ब्यूटी क्रीम जो जो दह दह पंद्रह बारह बारह दबी वे तो छो न छे वन असा के सफा वीरान न कर वन बाबा अल्लाह पाक के मन बाबा कंखे तो मन छो न छे वन यार तमाम दुखिया थे परेशानी थी मजो नहीं वोट शेर मुंद मायरन का सैयद गुलाब अली शाह बुखारी दवार मोहम्मद बचल शंबाणी अली हसन बाबो सोनड़ो भा सोना खान मस्तोई नजीर मंगरियो साहब वफा वईद साहब चतोई साहब आजा बी का जात अस जेकी भी संगत बुधे थी सलाम या अली मदद अली अली शमंदड़े जो को गीतड़ो बुधा जाए दुख भरियो को बुधाए बस छो जो दुखारायो तू शो छड़े तो ने ता सा दुखारायो बाबा
0: शाह साहब आज मोहब्बत यार अस्सलाम वालेकुम चयो है ना शाह साहब मोरी दिल न पई मने यकीन पूछो विंदे पर यार छा क्यों मजबूरी या छा क्यों बाकी गानो अडे दुखायल बुधू पिया शमन मीराली साहब जो बुधू पिया ठीक है अचो तो बुधो अच्छा हैमे नेचुरल्स वारन के तमा फीडबैक वीडियो अड आखरी प्रोग्राम आए तो उनन के जरूर फीडबैक दे उनन के बुधायो तो वा छा ई वा छा ई छम 7 महीना थिया तो छा थी वियो सो इन जो नंबर है 0336713540 0336 71 3547 4007 अचो त शमन मीराली जी आवाज में कलाम बुधूं

0: हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियन तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
1: जी दोस्तों रौनक महफिल प्रोग्राम में बाबर शेख अवां सां गॾु आहे GAFM नेटवर्क आई ऐं 8 वॻे ताईं अवां जो असांजो साथ आहे। 20 मिंट बचिया आहिनि यार, वरी हलिया वेंदासीं, वरी मोटी ईंदासीं कंहिं न कंहिं नए प्रोग्राम में इनशाला ताला। तव्हां जेको आहे त तव्हां जहिड़ा प्यारा प्यारा लिसनर्स मूंसां गॾु हूंदा त इनशाला प्रोग्राम में अञा डबल ट्रिपल रौनकूं थींदियूं रहंदियूं। ठीकु आहे, कुझु मैसेजेस आहिनि 888 ते। चनेसर सोलंगी, मोहम्मद सावल सोलंगी, मोहम्मद आमिर सोलंगी, सैफुल्ला सोलंगी, गोठ वासन दल लग मीरपुर खास खां अला पाक अवां खे ख़ुशि करे, अदा तव्हांजी महिरबानी। सैम टू यू बलोच ग्रुप, नूर नबी गबोल, टंडो अला यार खांदा, बाबर अवां जो शो नाइस आहे। ऐं अच्छा, ही अॻाणे वारो मैसेज आहे, इट्स ओके। गोट हाजी गुलाम खास के लिए लगे झंडू मरी खां कुर्बान खास के लिए, यार कुर्बान छाल आ। अच्छा गुलाब लगारी गोट बशाम खान रिंद से, गाजी खान रिंद, चाचा मंठा रिंद, रिजवान अली रिंद, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद, छोटी कौनैन जहरा भाई आपका शो क्यों बंद कर रहे हो, छोटी कौनैन। अच्छा गुलाब लगारी साहब, साईं स्पॉन्सर शो आहे, 7 महीना थी विया आहिनि हाणे स्पॉन्सरशिप वारा थकजी पिया आहिनि, चवंदा हाणे साई पटियूं। वधीक तव्हां हिन जी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे इन्हनि खां पुछी सघो था, 0336-7135-407। ज्वेलरी खां ख़ालिक लाशारी था, बाबर आख़िरी शो में फौजिया सूमरो त हलायो, हाज़िर भा, अॼु कोशिशि कंदो तव्हां जूं फरमाइशूं प्रोग्राम में शामिल कयां। हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे, छो त ॿुधूं पिया।
2: बाबर गनी अस्सलाम अलैकुम, या अली सलामत सर, कहिड़ा ख़ुशि आहियो, तबीअत सही आहे। मां ज़वार मोहम्मद बचल शंभाणी, नारो आर्टिक 186 गांधर, ऐं तव्हांजे हेमे ब्यूटी प्रोग्राम शो में आख़िरी समझे तव्हांजो वॉइस कॉल मुंहिंजो अचे पियो। कुझु तव्हांखे इहो बि चऊं था, वियो इनशाला ताला नओं प्रोग्राम वरी तव्हां खणी ईंदो, असां उमेदु इहा ई आहे असां तव्हां में सर। ऐं दोस्त जे लाइ इहे तव्हां रिक्वेस्ट कनि था पिया त प्रोग्राम छॾे न वञो, ऐं कुझु दोस्तनि खे यादि करणु चाहियां थो, सर अली मोहम्मद बमरो, इमाम ॾिनो मिर्क फ़क़ीर बमरो, अली गुहर महर, ऐं हुन खां अलावा अलावर लाशारी साहिब जी तबियत सही न आहे, हुन लाइ दुआ कजो, ऐं सैयद गुलाब अली शाह, सैयद इमदाद अली शाह, हिन खां अलावा जिते जिते आवाज़ वञे थो सभिनि खे मुंहिंजी तरफ़ हथ वधी खोड़ सलाह सलाम अलाफ़ी।
1: वालेकुम अस्सलाम, मौला अली मदद भाउ ज़वार, तव्हांजी महिरबानी, अवां जूं मोहबतूं ऐं अवां जा लख तौर। आदी ज़ेबी छा पई थिए, आदी ज़ेबी छा पई थिए, अचो त ॿुधूं पिया।
3: सलाम अदा प्रोग्राम VIP नाइस, जबरदस्त प्रोग्राम, लाजवाब अदा नाइस, एंजॉय थी कयां।
1: ओके अदी, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां एंजॉय कयो। हिकिड़ो ही वॉइस नोट,
4: अस्सलाम वालेकुम बाबर भाउ, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, नज़ीरनि मां रहियो, ॻोठ मुरीद मां रहियो, भेड़ो संग्राम, तमामु हिकु त ख़ुशी बि थी जो हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि जी लाजवाब हिकिड़ी क्रीम हुई जेका असांजे चेहरे खे ख़ूबसूरत पई बणाए, पर अॼु जेका तव्हां ॻाल्हि कई हुन में ॾुख बि थियो, पर का ॻाल्हि कोन्हे, छो जो वरी इनशाला गॾियल आहियूं, पाण परे हिक ॿिए खां आहियूं, पर हाणे अॼु दिलि थी चवे त तव्हांजो प्रोग्राम बि आख़िरी आहे ऐं कलाम बि ॿुधरा अनवर विस्तरे जो अथव।

0: लॻे, महिरबानी करे उहो ॿुधाईंदा त तव्हां जा अहसान थींदा। ओके ख़ुदा सलामत साथ सलामत हमेशह ख़ुशि हूंदव। भाउर भाई अलाह ख़ुशि रखेव, को ॾुखियो ॾींहुं न आनेव, ऐं महकंदा रहो गुलनि वांगुरु ख़ुशबूदार हुजो। ओके ख़ुदा हाफ़िज़।
1: अलाह हाफ़िज़, सदा तव्हांजी महिरबानी। बाक़ी यार वाह जो गायो अथव गानो, आवाज़ माशाल्लाह अॼु मूं तव्हांजो फील कयो आहे ज़बरदस्त। बहिरहाल असां हिन प्रोग्राम में ॻाइण वॼाइण सेगमेंट में थोरो घणो ॻाइण बि सिखियोसीं, या न ईअं आहे न? एम आई राइट और नॉट, तव्हां मूंखे ॿुधायो। अच्छा, हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि इहा दावा कई आहे त हिननि जी जेका प्रोडक्ट आहे न, इन में SPF 30, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी, आर्बुटीन ऐं ॿिया केतिरा ही नेचुरल इनग्रीडियंट्स शामिल आहिनि, जेके अव्हां जे चेहरे जी स्किन खे बिल्कुलु 24 जे चंड जीअं चमकाए छॾनि पिया। तव्हां हिननि जी प्रोडक्ट आज़माए करे फीडबैक ॾेई सघो था, ऐं हिननि जे हेल्पलाइन नंबर ते बि कॉल कंदव। हिननि जो नंबर आहे 0336-7135-407। जी हा, 0336-7135-407। ठीकु आहे, सो हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे, पोइ मां लाइव कॉलर्स खे शामिल कयां पियो। ॿुधो।
2: अस्सलामुअलैकुम बाबर भा, छा हाल आहे? ॿियो ख़ैर आहे? तव्हां शाह साहब सां हिन खां साइड एरिया खां ॻाल्हायां थो। असांजा कोई बि अॼु 8 ॾींहं 15 ॾींहं असांजो वॉइस नोट तव्हां कोई बि असांजो आन न कयो आहे। तव्हांखे पर एॾी कावड़ आहे त पोइ असांखे ॻाल्हि ॿुधायो। बाक़ी असांजा तव्हांजी इहा क्रीम कोन यूज था कयूं, छाहे त तव्हां ईअं ई चओ था त असांजी क्रीम यूज कोई नथो करे। लेंसर जेको करे थो, हरू भरू कूड़ हणी ॻाल्हाइनि था, उन्हनि सां तूं वॉइस नोट जमा करे थो। बस तोखे बि हैफ़ आहे यार।
1: अवा ठीकु आहे, मां अॼु तव्हांखे चयो आहे न, तव्हां खुली दिलि खोली करे ॻाल्हायो, दिलि खोले ॻाल्हायो। अदा साईं, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त कूड़ कोई नथो वणे, मां वटि सेल्फीज़ आहिनि, इन्हनि जूं मोहबतूं आहिनि। ॾिसो, तव्हां इहा ई ॻाल्हि त फील नथा कयो न, इन ई वजह सां 7 महीना प्रोग्राम हलियो आहे ऐं तव्हांजा वॉइस नोट्स तकरीबन रोज़ शामिल थींदा आहिनि। हिन मां साफ़ ज़ाहिर थिए पियो तव्हां प्रोग्राम तवजा सां ॿुधो कोन पिया। ऐं सेकेंडली, तव्हां चयो कूड़ था आणनि, बिल्कुलु बि न। सेल्फीज़ जेके मोकिलनि पिया ऐं सेल्फीज़ सां गॾो गॾु जेको फीडबैक ॾियनि पिया आहिनि, उहो बिल्कुलु सही आहे। मां कंहिंखे ज़ोर बि न ॾिनो आहे, न ई मुंहिंजी क्रीम आहे। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई अथई तव्हांजी क्रीम न पवो, मुंहिंजी क्रीम कोन्हे, स्पॉन्सर शो आहे हेमे नेचुरल्स वारनि जी आहे। मां तव्हांखे जस्ट उन्हनि जो पैगाम कन्वे कंदो आहियां ऐं पोइ चवंदो आहियां यार तव्हांजी मर्ज़ी आहे, ठीकु आहे, तव्हां इस्तेमालु कयो या न। बाक़ी फीडबैक ॾियण जे लाइ मां तव्हांखे ज़रूरु चवंदो आहियां जेको तव्हां ॾींदा आहियो। ऐं सेल्फीज़ में जेके हेमे ब्यूटी क्रीम यूज़र आहिनि, हथ में हेमे ब्यूटी क्रीम हुननि जी हूंदी आहे, तव्हां उन्हनि खे कूड़ो कीअं था चई सघो? साईं, तव्हां वेझो हुजो आहे, तव्हांखे मां उन्हनि जूं फोटू ॾेखारियां, पोइ तव्हां चवो हा यार मां ग़लति आहियां। बहरहाल, इट्स ओके, तव्हां फीडबैक ॾियो पिया, मूंखे ख़ुशी थिए पई। ऐं अॼु आख़िरी प्रोग्राम आहे, मां सभिनि जो फीडबैक मुंहिंजी अखियुनि ते, ठीकु आहे। हिकिड़ो ई वॉइस नोट।
3: सलाम अलैकुम, ख़ैर ख़ुशि आहियो? अदम इरफान लांगा, सऊदी अरब खां। तव्हां वञो था, दुख थिए थो, छो त मां बि जॾहिं कराची में कमु कयो 3 महीननि ताईं उहो रखंदा हुया। जॾहिं आख़िरी ॾींहुं थिए थो न त एॾो दुख थो थिए, उहो दुख मां सम्झी सघां थो। हिन जे करे असां परदेस में वसायोसीं। इनशाला अलाह ख़ैरु कंदो, मोटींदव जल्दी, ठीकु आहे।
1: चलो, वालेकुम असलाम। यार ईअं ई आहे, ॾुख थींदो आहे, यकीन पुछो, मूंखे बि अॼु ॾाढो ॾुख थिए पियो। ऐं 7 महीननि जो टाइम आहे वॾो तव्हां सां जेको गॾु गुज़ारियो हिन प्रोग्राम जे थ्रू, ॾाढी ख़ुशी थी। ऐं मूंखे अलहमदिल्ला फ़ख्रु बि आहे त मुंहिंजा प्यारा लिसनर्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन सां अटैचमेंट थी वेंदी आहे, जीअं तव्हां सां अटैचमेंट थी वई आहे। ऐं बाक़ाइदा तौर ते कुझु लिसनर्स अहिड़ा आहिनि जेके प्रोग्राम में शामिल थींदा आहिनि रेगुलर, उन्हनि सां बाक़ाइदा तौर ते ॼण 32 दिलियूं लॻी वियूं आहिनि। अमां जी मोहबतूं अलाह सां ई कंदो, इहे क़ाइमु दायम रहंदो। हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे, पोइ मां गाने जी तरफ़ हलां पियो।
4: ख़बर साईं, ॻोठ कैंची सियाल खां हुसैन बग सियाल, अवां जो प्रोग्राम ॿुधी रहिया रोनक महफ़िल। आउं हिकिड़ो अर्ज़ु रखंदुसि त ही विछोड़ो मारे छॾींदो, हीअ विछोड़ो मारे छॾींदो,

0: साईं अलहमदिल्ला तव्हांखे मां फीडबैक ॾींदुमि। तव्हां जेके बि महीना प्रोग्राम कयो बहितरीन अंदाज़ में कयो ऐं असां तव्हांखे कॾहिं बि विसारे नथा सघूं ऐं तव्हांखे दुआ ॾियूं था सदाई शाद हुजो आबाद हुजो ऐं अहिड़ो ई प्रोग्राम वरी नओं असां लाइ खणी ईंदा ऐं असांखे इंटरनेट ॾींदा ऐं असांजी दिलि तव्हां ख़ुशि कंदा। साईं वॾी महिरबानी, अलाह साईं तव्हांखे आबाद करे ऐं तव्हांजी पूरी टीम खे अलाह ख़ुशि करे। थैंक यू।
1: आमीन। साल साहब तव्हांजी महिरबानी यार, मां थोराए थो अवां जी इन्हनि मोहबतुनि जो, अवां जा इहे थोरा मूं ते आहिनि ऐं अवां जी मोहबतूं मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि। अचो त यार हिकिड़ो गानो था ॿुधूं, तमामु प्यारो गानो आहे शैनी लाली जी आवाज़ में, तमामु प्यारा ॿोल आहिनि। अचो त ॿुधूं, इंजॉय कयूं गानो ॿुधो, जेसीं ताईं मां अवां जी सेल्फी जा नाला नोट करे वठां, ठीकु आहे।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साल 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे रिपोर्ट पेश कई वने। केस जी वधीक ॿुधणी 21 मई ताईं मुलतवी करे छॾी। ऐं छठे जे झिरक रेलवे स्टेशन वेझो कोयले जी खाण में नव पोरत दबजी विया, चार फौत, पंज जख़्मी। कोयले जी खाण में कम कंदड़ नव पोरत भिक किरण सबब दबजी विया, जंहिंमां चार फौत थी विया, जिन जा लाश कढिया विया आहिनि। फौतनि में सवात वासी ज़ियाउल्ला, नूर मोहम्मद, इरफानुल्ला ऐं सांगड़ वासी साईंदाद भट्टी शामिल।

0: आवाज
1: अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM 90.4
2: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।